0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Allah.

0: आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
2: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: Cool King.
5: देख के नहीं चलाता क्या?
6: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां खाब वहां HBL।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
10: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
12: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
13: ये क्या है भाई?
12: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
11: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
4: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC,
1: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: And अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
7: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
8: And लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: And अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: And
10: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
6: इंट्रोसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
11: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
12: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
13: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: Cool King.
2: Bijli ka bill dekha, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
0: एंड
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: एंड
9: तूफान है,
10: facebook.com/fm247365
11: Let's celebrate
12: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM.
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम. सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए. तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें. याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है. कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार. बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार, बाइख्तियार.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
1: and
8: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and
2: HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And
9: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
10: jo chahe khareedo, paise aaram se de do. Ye lo by just cash.
1: And
11: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
5: Al Habib current plus account, bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib, rishta bharose ka.
1: And
13: toofan hai.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
4: 100 FM.
15: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
16: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
17: Only music, no RJ talk.
16: This is FM.

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, यही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
9: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब, वहां HBL.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular बैटरी दिल को है आराम,
3: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता AC,
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब, वहां HBL.
5: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
6: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
0: And
6: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद

0: 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL
3: 100 FM.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Back to back, only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की

0: अवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 247365

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
5: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Renew by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो JazzCash पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय JazzCash।
2: अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: On facebook.com/fm247365 fm247365।
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
12: السلام علیکم پاکستان۔

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: facebook.com/fm247365 FM247365

और बात बहुत ही फाइनेंस की हो रही है, तो फाइनेंस में जब तक आपके पास फ्रीडम ना हो, जब तक आपके पास वो सोच ना हो जो ये कह के यार आप बिल्कुल आजाद हैं, तब तक बात बनती नहीं है. इसीलिए एक बहुत जबरदस्त सी बात, एक बहुत जबरदस्त अकाउंट आपके लिए HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप, अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच. यानी आज के दौर में अगर आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, आपको वो सहूलत, वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो कि बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है, तो बस आप ये समझें कि आपका सारा काम जो है वो हो गया, घर बैठे हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या है. आपके हक में हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या है. आप जहां चाहें, आप जैसे चाहें, जितना चाहें अपने आप को बेहतर तरीके से फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी अवेल कर सकते हैं, तो बस डू इट नाउ, बिल्कुल चुटकियों में.

0: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

जी जनाब, और बातें हो रही हैं, बेहतरीन बात, और हर बात का एक ही मकसद, एक ही अंदाज कि हमें डेली बेसिस पे क्या कुछ करना है, कितना करना है, कहां तक करना है। अगर हम किसी भी चीज को एक हद तक जानते हैं, एक लिमिट तक, तो हमें कहीं ना कहीं अपने इल्म को और वसी करना होता है, किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को बेहतर करने के लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उतना फायदा नहीं उठा सकते, आप उस हद तक फायदा नहीं उठा सकते, आप वहां तक फायदा नहीं उठा सकते जहां तक आपको जरूरत है, जहां तक आप चाहते हैं, और या शायद आप नहीं भी चाहते। तो बेहतर है कि बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, उनका फायदा उठाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज काफी आपको हो, तभी आप उस चीज का भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं, उसे भरपूर इंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में शामिल भी कर सकते हैं।

तू समझे मुझे अभी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा है तू, तेरी खुशबू और लिबास में मेरे और कमरे में रखी तेरी शर्ट जस्ट इन केस जाऊं।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: FM247365

जी जनाब, और बहुत सारी बातों में एक बात जो सिर्फ फहरिस्त है कि बड़ी अच्छी बात अभी मैंने पढ़ी, और वो बात ये है कि लोहा जो होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ती, और जब वो तोड़ रही होती है कोई भी ताकत उस पर अपनी जोर आजमाई कर रही होती है, तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कि उसमें से निकलने वाली चिंगारी, जो कि ऑब्वियसली जिस जो तोड़ रहा होता है उसकी भी जान लग रही होती है उसको तोड़ने में। तो कभी भी कहीं भी अगर कोई आपको तोड़ रहा है तो याद रखें कि वो आपको नहीं तोड़ रहा, वो सबसे पहले तो उस लोहे को तोड़ रहा है जो कि बहुत मजबूत है। और फिर लोहा जो है वो टूटता है अपने ही रस्ट से, अपने ही जंग से, और उसको तोड़ना आसान होता है। कोई चीज आपको तोड़ नहीं सकती सिवाय आपके, अपने आप के, अपनी सोच के। तो बेहतर अपनी सोच को जो है वो आप पॉजिटिव रखेंगे तो दुनिया की कोई शय आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मां सिवाय अपने आप के।

ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर शिकोनाज, एसोसिएट प्रोफेसर, बुध 10 जून 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Leno by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहाँ से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं. घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
2: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you,
3: connecting,
2: holding you,
3: holding,
2: with FM 100.
4: FM 100. FM 100.

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: facebook.com/fm247365 fm247365।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 247365

0: dedication for maximum music. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: 100 FM.
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम,
0: एंड
6: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC,
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: एंड
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
0: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: Like us on facebook.com/fm247365.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: 100 FM.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: 100 FM.
6: शादी का इवेंट और स्टेज आता तैयार? क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: 100 FM.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: This program is brought to you by
8: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular Battery, दिल को है आराम.
9: And Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC.
3: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
3: And
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
3: And
12: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
3: And

0: चल जा।
1: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
3: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखे।
4: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
5: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
2: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
6: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
2: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 24/7/365

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहाँ HBL।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
9: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: एंड
11: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
13: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
16: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
17: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
18: हमारी जिम्मेदारी है।
19: खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
20: fm247365
21: fm100
22: 31 saal fm100 aapki awaaz। Assalamu alaikum pakistan,
21: assalamu alaikum pakistan, pakistan।
23: Ocean of music and splashes of sound. FM 100, Pakistan.

0: at 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
5: 100 FM.
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL.
8: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश.
1: And
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: And
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And
12: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: एंड
13: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: बड़ा आराम AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: 100 FM HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: 100 FM।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
0: एंड
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
11: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: एंड
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
4: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL. कूल किंग.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात. लेकिन बीपी हाई.
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL.
7: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
0: And
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
11: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: एंड
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
3: 100 FM.
13: हाई फ्रेंड्स, आई एम विकास ज़ुल्फिकार, एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर, बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. 7, 3, 6, 5.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
0: and
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: and
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: and
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: and
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: and
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
9: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहाँ से
10: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
11: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
2: कूल किंग
12: अबे देख के नहीं चलाता क्या
13: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों जब देखो
2: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
14: आम चीजों पर समझौता क्यों करें 24 सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और 24 सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
15: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
8: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
16: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
17: ये क्या है भाई
16: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
16: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
8: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسہ

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
5: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हर गिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पर्स अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
10: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
12: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
11: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां खाब वहां HBO.
1: This program is brought to you by
2: तूफान है हर जीत की पहचान है
3: नशा में परेशानियां खत्म करता है इसका सरूर हमेशा रहता है ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो वालिदैन असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है नशे से इनकार जिंदगी से प्यार मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
5: तोहीन रिसालत नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA साइबर क्राइम विंग PTA या पेमरा को फौरी इतला करें जिम्मेदार शहरी बने मीडिया इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Cool King.
2: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. लेकिन बीपी हाई.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
4: 100 FM.
5: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर शिकोनाज, एसोसिएट प्रोफेसर. बुध 10 जून 2 बजे, सिर्फ FM 100 पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: तूफान है.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو،

0: This program was brought to you by
1: Tufaan hai ye, har jeet ki pehchaan hai ye.
0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: come on.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताजीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमनगर, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100.
5: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
6: अहमद, हटो वहाँ से।
0: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: बैन अलावा सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے۔
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: This is your music.
16: She's crazy about her daddy.

0: station for maximum music.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: Us on Facebook.com/FM247365.
4: Across the nation, this is FM 100. FM.

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ हैं? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक भी होंगे, गर्मी को कर रहे होंगे भरपूर इंजॉय। भाजी 9 to 11 आपका और हमारा साथ। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं जरा लेट भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं वक्त पे आ जाता हूँ, लेकिन जरा आजकल इशा की जो अजान है वो बीच में आती है, ब्रेक्स आती है तो 10-15 मिनट जरा उसमें लग जाते हैं। राइट जी, मैसेजेस करने का बहुत सिंपल तरीका, जो पहली दफा सुन रहे हो तो उन्हें बता दें कि HR स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे होते और मेरी आईडी वहां पर भी अयाज अहमद। अच्छा जी, दिन है आज ट्यूसडे और क्यू शीट आज बनी हुई है जरा मिक्स, उर्दू इंग्लिश सारे ट्रैक्स मौजूद हैं आज। अच्छा, नए गाने भी हैं साथ साथ पुराने रिमिक्स भी हैं। आवाज लेकिन इस खूबसूरत ट्रैक से करेंगे। राइट जनाब, और मैसेजेस का मैं इंतजार कर रहा हूं। KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmad.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: सबसे इजीएस्ट ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: लाइक अस ऑन
5: Facebook.com/FM247365
6: Active, yummy, adorable, seven. Say I've got a crush on you. Yeah, yeah, yeah.

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. Oh, so loud.
1: भाई जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और आ गए हैं गयासुद्दीन बलबन। गयास, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, सबको सलाम दुआ भी कह दी इन्होंने भी, गयासुद्दीन बलबन ने। अच्छा जनाब, और शहजादी जी बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का, बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। कह रही है संजीदा, कह रही शहजादे अगर सॉन्ग समझ ना भी आए तो आवाज मौसीकी अपनी तरफ खींच लेती है, ये सॉन्ग हानि हाथ की बात तो ये म्यूजिक ऐसी ऐसी कोई जबान ऐसी है नहीं। आप अरबिक सुन रहे हैं कोई और, अब ये एक और मैं आपको जबान डिफरेंट लैंग्वेज का है वो मैं आपको सुनाता हूँ, कमाल गाना है वो, पसंद आया, म्यूजिक पसंद आ गया। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम अयाज लाला जानी, संजीदा, उमर रुबाब, चाची और समी, कायनात और सबको बहुत सलाम। शकील रोशन, शकील भाई क्या हाल है आपके? उमर रुबाब को वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमर रुबाब ने सलाम किया तो नहीं है? अच्छा वो सबको किया ना, उसमें आप भी शामिल हैं, बिल्कुल सही, वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, छुट्टियां हैं, हॉलीडेज, क्या कर रहे हो यार इधर कराची में? यू को घूमने फिरने कोई कोई प्लान व्लान होता है बंदे का? कुछ नहीं, बस एक बात है, थोड़े से बंदे के पास पैसे हो ना तो जरा नॉर्दर्न एरिया, मैं वो देख रहा था यूट्यूब पे, भाई बर्फबारी हो रही है यार, ऊपर ग्लेशियर ग्लेशियर फुल टाइम, जगह भी खुल गई है, बन गई है, आप आराम से जा सकते हैं ऊपर तक, और एक मकाम पर टॉप पर जाके फुल टिका के सर्दी है भैया। ये पाकिस्तान क्या चीज है, यहां इतनी शदीद गर्मी। तो भाई हॉलीडेज हैं, इनका फायदा उठाएं, हॉलीडेज से मुझे जो है ना मैडोना भी याद आ गई है और अयासुद्दीन बलबन ये गाना भी आपको याद आ गया होगा। थोड़ा सा सुनाता हूं, क्या बात है। तो जितने बच्चे जो हमें सुन रहे हैं जिनकी छुट्टियां, उन्हीं को डेडिकेट कर देता हूं।

है जनाब हॉलीडेज। यार इस गाने को सुनकर कुछ पुराने लोग भी याद आ जाते हैं। हम आरजे हैं, जिंदगी के अपने एक्सपीरियंस भी होते हैं जो कभी कभी हम लोग शेयर भी कर देते हैं। अच्छा ये वो ट्रैक है, सैंडर्स स्कूल था हमारा, गयासुद्दीन बलबल भी वहीं से पढ़े हुए हैं, हम भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो जब हम जाते थे तो एक वैन थी हमारी, और वो गबोल भाई हमारे बड़े प्यारे से। अब हम लोगों ने इंग्लिश गानों की गबोल भाई को ऐसी आदत डाल दी, उन्होंने नूर जहां के गाने उठा के कैसेट में बाहर फेंक दी और भाई ये गाने सुनते थे वो। और क्या सिस्टम लगा हुआ था, वाह वाह वाह। अच्छा उसमें छोटी छोटी चीजें बड़ी काउंट करती थी, भाई भैया सारा भाई भाई जबरदस्त। आजकल तो कोई नॉर्मल बात होगी ना, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी। क्या रिकॉर्डिंग है भैया, कहां से कैसेट रिकॉर्ड करवाई, ये होते थे। इन बच्चों के, आजकल के बच्चों को, जेन ज़ी को क्या पता, ये अच्छी रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा एक नेमत होती थी। और अगर गबोल भाई अच्छी रिकॉर्डिंग ऑफ बीट से करा के लें तो इतने प्राउड होके उनके टी शर्ट के कॉलर खड़े होते थे। देखो यार ऑफ बीट की मैं लाया हूं आज कैसेट, ये देखो आप रिकॉर्डिंग चेक करो। वाह गबोल भाई क्या बेस आ रही है, क्या छोटी छोटी खुशियां थी। तो वैसे ही मुझे याद आ गया गबोल भाई, पता नहीं कहां होंगे इस वक्त, लेकिन जहां भी हो खुश रहे यार। अच्छा जनाब एक और ट्रैक आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, मुस्तफा जायद, हाल ही में इनसे मुलाकात भी हुई एक कॉन्सर्ट में। बहुत ही नाइस आदमी, और जो इज्जत और जो प्यार इन्होंने मुझे भी दिया, मुस्तफा भाई लव यू।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga sehatmand daant, sehatmand zindagi. Program mein hamari mehman hongi Dr. Shikhu Naz, Associate Professor, Budh, 10 June, 2 baje, sirf FM 100 par. Dental Room by Platinum Pharma.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
3: Active, yummy, adorable, zabardast. Babe, I've got a crush on you. Ye pyaar to suno yaar.

मैं जनाब वेलकम बैक सुन एफएम 100 की हो गया नदीम भाई किथे मैं इतनी गर्म जोशी से सलाम दुआ कर रहा हूँ आप अपने दुनिया में मस्त नदीम भाई हमारे प्यारे से इंजीनियर कामों में मस्त रहते हैं माशाल्लाह डेडिकेशन है काम के साथ ये माननी पड़ेगी बात। अच्छा जनाब पुरानी बातें पुरानी यादें हम जिक्र कर रहे थे बिलावल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है और वो कह रहे हैं सर यादें जो है ना हमारी बहुत कीमती सरमाया होती बस सरमाया ही सरमाया है सरकार यही सरमाया और तो कुछ सर में समाया ही नहीं। अच्छा जनाब तामीर अली कह रहे हैं बदीन से सर रात वाले प्रोग्राम में ना आपकी बातों से बड़ा दिल दुखा आपने कहा कि हमारे मुल्क के लोगों में बदबू हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत गंदे सारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते आप शायद कराची से बाहर नहीं निकले। अबे पूरी ट्रेन का जिक्र कर दिया मैंने पूरे पाकिस्तान का जिक्र कर दिया मैंने मरी का जिक्र रह गया था शहरों शहरों के नाम दे दूं मैं क्या करूं गुसलखानों का जिक्र कर दिया और क्या बताऊं। तामीर अली तुम सिर्फ जो है ना साफ सुथरी जगह पे घूम रहे हो तुम आम लोगों में जाओ तुम्हें मेरी बातों का अंदाजा तब होगा। हाँ अयाज भाई आप सही कह रहे तू अपने घर से निकल के सिर्फ दूसरे के घर में जा रहा है वो तो साफ ही होते हैं साफ होते हैं वो ट्रेन में चला जाओ उसके गुसलखाने में बेहोश ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हालात ऐसे ही हैं तवज्जो कहीं नहीं हर जगह पे जो ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इवन के जहाज में भी मैं जहाज में गया मैंने कहा इतनी टिकट मैंने लगाई इतना जबरदस्त होगा चलो जहाज में जाऊंगा खुशबू आ रही अब जहाज एयरलाइन का नाम नहीं बताऊंगा अभी जो मैं वापस आ रहा था इस्लामाबाद से वो दरवाजा खोला ऐसा भपका मैं वापस बंद कर दिया मैंने कहा कराची जाके कर लूंगा ये तो हालात चल रहे तो मुझे मत मत मत छेड़ो मुझको मैं बहुत दुखी चलता हूं इस मामलात में सफाई के मामलात में आपका भाई बहुत सेंसिटिव है। भाई गाना याद आ गया पुराने वक्तों में थोड़ा सा बैकग्राउंड में रख लेता हूं जो पुराने गाने सुनते हैं इंग्लिश बैंड्स को जानते हैं तो वो बीजीज को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और इसका ये ट्रैक क्या बात है अलोन की ऐसी बैकग्राउंड में रखता हूं।

थोड़ा जनाब नाक से गाते थे, पता नहीं क्या गाते थे, लेकिन जैसे भी गाते थे कमाल। अच्छा जनाब आयाज आप को खुदा सलामत रखे, आप सबकी दुआ से सब ठीक हो गया है। आज बहन मेरी मेरे ख्याल से कनाडा लिखना चाह रही है, कहीं जा रही है मेरा वो।

से कनाडा लिखना चाह रही है, कहीं जा नहीं। बहरहाल वो दिल उदास है, तुम्हारा दिल इतना क्यों उदास रहता है मेरे बाप, क्यों उदास रहती है हर वक्त? खुश रहा करो थोड़ी सी जिंदगी, जैसे वो बता रहे थे ना बिलावल भाई, थोड़ी सी जिंदगी खुश रहो यार। हम उदास रह रहे क्या जिंदगी बर्बाद करनी है? बहन जा रही है, शुक्र है यार उसके मसले हल हुए, कनाडा जा रही है, ठंडे मुल्क जा रही है, एक आदमी तो कम से कम अच्छी जगह जा रहा है। खुश हो जाओ भाई उसको देख, मैं अपना सोच रहा, मैं उदास मैं क्यों नहीं जा रही। दूसरे की खुशी में खुश होना भी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों जी, बताऊ। लेकिन बहन मैं तो रुबाब के लिए नहीं कह रहा, रुबाब तो वाकई खुश हो रही है, लेकिन बहन जा रही तो शायद इस वजह से उदास है, ये भी वजह है। कैसा बैलेंस किया मैंने, चला के चेक करो मेरी रुबाब। सरमाया सरमाया पे मैं समझ गया हूँ गयास भाई, आप मैं समझ गया। गयास भाई ने अलिफ नून इतना देखा है, एक एक इनको डायलॉग याद है। बस के स्टैंड के वॉशरूम नंबर वन है, अब देखो जरा ये गयास बता रहे भैया कि आप वॉशरूम में चले जाएं बस स्टैंड के, तो भी आपको पता लग जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, या इस इंसल्ट करने के लिए नहीं कि भाई बड़ी भाई, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को कि भाई इन चीजों को सफाई रखें। लोगों का भी काम, वैसे आपस की बात है, लोग भी गंदे, जो बेचारे वो साफ करके जाते हैं फिर वो उसको कर देते हैं। अब जो एक दफा साफ करके गया वो कहेगा मैं दोपहर को आऊंगा, सुबह का किया हुआ दोपहर में, फिर दोपहर वाला रात में, तो इस सारे टाइम ड्यूरेशन में क्या हाल होता होगा आप सोच रहे हैं। पूरी डिटेल मैंने बता दी, चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने। यार आज का ये गाना अच्छा लग रहा है मुझे।

0: बाबू सर टॉप।
1: यार नामों में भी देखो यार, फिर आप बोलोगे कोई हर बात में मैं बोलता हूँ, नाम रखने में भी हम बहुत ही चवन है। बाबू सर, अपने इलाके के नाम देख लो यार, मैं पता नहीं क्यों, मैं क्या बोलूं, मतलब नाम तो अच्छा रखता है यार किसी चीज। कहाँ जा रहे हो बाबू सर? किसके सर? बाबू के सर। कोई पढ़ा लिखा नाम रखो यार, कोई अच्छे नाम रखो यार इलाकों के। घोड़ा गली, कहाँ गए थे? घोड़ा गली गया था। घर वाले बोलने बेटा तुम पढ़ा लिखा के इतना अच्छी पोस्ट पे लेके आया, तुम घोड़े गली में घूम रहे। क्या बोले, लॉर्ड्स देखे, नाम उनके देखे आप, अंग्रेजी नाम बाबा। अब बोलोगे अंग्रेजों से मुतासर है, मैं नाम भी अच्छे लग रहे हैं ना बोलने में, मैं क्या करूं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जानिब भी बढ़ते हैं। और किसी ने अयाज लव यू ओए होए, कौन है भाई, नाम तो लिखो। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत, ये लो फिर एक बहुत ही लविंग ट्रैक।

जी वेलकम बैक। क्या बात है यार, जबरदस्त ट्रैक है। अच्छा जनाब, और तुसी गर्मी ने क्या कह रही, तुसी गर्मी किस तरह एंजॉय कर रहे हो? दसो ना तरह। मैं की दसा फरीन शहजादी, मैं अपना एफएम में एंजॉय कर रहा हूँ। एसी वीसी चलता तो गर्मी का एहसास ही रहता, गाड़ी में भी अच्छी तो जरा माहौल सही रहता है। बस जरा हाँ, बार बार जाता हूँ तो फिर जरा फील होता है। बस अल्लाह बेहतर करे, इतना नाजुक भी बंदे को नहीं होना चाहिए, रफ एंड टफ भी होना चाहिए। तो शुक्र है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र हर हाल में। भाई गयास की बात मुझे बड़ी पसंद आई, और वो कह रहे हैं कि बीजीज किसी वॉशरूम से आए और नाक बंद हो गई, बस वो तब से ऐसे ही गा रहा हूँ। पाकिस्तान के दौरे पे होंगे जभी ये हाल हो गया। और इन्होंने कहा भाई जो सर्दी जो है ना वो कौन से इलाके में हो रही है, बाबूसर टॉप -5। भाई वाह वाह,

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
5: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaar to suno yaar.

वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और गयास भाई ने जो है ना बड़े इलाकों के नाम भेजे हैं। भटाकुंडी, हाँ ये भी मैंने देखा बल्कि ये भटाकुंडी ये पहाड़ी इलाके में जाते हैं वहां पे ये सुनाई देता है। इसके अलावा कुंडल शाही है, ये भी कुछ जगह, और बाकी ऐसे में ऑन एयर नहीं पढ़ सकता। मतलब ये हाल है, इलाके का नाम आप ऑन एयर नहीं पढ़ पा रहे, इतना बुरा नाम, क्या करें यार। ये देखो एक कमेटी बिठाएं और नाम अच्छे रखें, इलाकों का पता चले कि भाई कौन कौन से इलाके हैं। इसके अलावा कह रहे हैं भाई एक घंटा गुजर गया, माशाल्लाह शानदार है, बड़ी मेहरबानी संजीदा जी, बहुत शुक्रिया। और मिसेज फारूक आप भी यही कह रही हैं भाई, क्या बात है, क्या बात। बस आप लोगों के साथ मुझे भी नहीं पता चलता, सीरियसली। रुबाब ने कहा था लव यू, अल्लाह नहीं करो रुबाब, बहुत नॉटी हो तुम। अयाज मालूम अब संजीदा रहती हूँ। अयाज आप इतने अच्छे क्यों है, आप खुद अच्छी हैं, यकीन जाने खुद अच्छी हैं, इस वजह से। नई मेहमान कह रहे हैं आई लव यू अयाज भाई, नदीम भाई, और पुराने गाने सुनाते हैं तो रूह को बहुत तस्कीन मिलती है। सर आप फिक्र ना करें, एक जरा पुराना गाना नए स्टाइल में मैंने रखा हुआ है आज की क्यू शीट में भी, थोड़ी देर में सुनाऊंगा। फिर इस मुल्क से निकल जाओ अगर इतना ही पसंद नहीं है तो, भाई ये कह रहा है भाई इस मुल्क से निकल जाओ अगर पसंद नहीं है तो, मैं बदबूदार रहूंगा, मैंने साफ नहीं होना। आप कुछ भी कहो, हमने गंदा रहना है, इलाकों को गंदा रखना है, कभी इसके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं, और जो अच्छा सोचे उसको हम यही मशवरा देंगे, निकल जाओ इधर से, असी तो गंदे हैं। अबे अच्छी बात करने दो, अच्छा सोचने दो, मैं तुमको नहलवा के जाऊंगा, मैं तुम्हें बता, तुझे साफ करवा के जाऊंगा मैं। और इस्लाम में भी है सफाई निसफ ईमान है। तो इस जैसे घटिया कहने को दिल कर रहा लेकिन मैं कह नहीं रहा, इस जैसी जहनियत के लोगों ने ना पाकिस्तान को तरक्की नहीं होने, कोई भी अगर अच्छी बात करता है उसके लिए बुरी बात, उसको इस तरह के ताने, इस तरह की चीज कहना, निकल जाओ, ये हो जाए, ये वो, मगर इनका भी कसूर नहीं है। जैसे लोगों का तालीम की कमी जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ तालीम शऊर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना यही हालात हो जाएंगे। और ये तो चलो मुझे तो खैर क्या, मैं बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लेवल पे ये बातें सुन रहा होता हूँ। कोई अच्छी बात करे उसको कह निकल जाओ तुम निकल जाओ, तुम अच्छी बात करो निकल जाओ। वो बंदा कह रहा है यार करप्शन नहीं होनी चाहिए, मैरिड होना चाहिए, हर चीज ईमानदारी से होनी चाहिए, निकल जाओ अगर इस तरह है तो। क्या करूं मैं, क्या करूं, प्यारा सा गाना सुनाता हूं इसी बात पे, लविंग सा ये ट्रैक।

क्या जबरदस्त लाइन थी. मैंने कहा चलो आपको मैं सुना दूं, और एक पुराना इंग्लिश ट्रैक भी मुझे याद आ गया. हाय हाय, रियाज भाई सिंगर का नाम याद है कि नहीं याद? पूरी एलपी थी मेरे पास इस बंदे की, और सबसे टॉप गाना

राइट जनाब, सुन रहे FM 100 बैकग्राउंड में रखते हैं इस ट्रैक को। और वाकई में मजा आ रहा है। इब्राहिम भाई मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। और अयाज भाई लव यू। ऐसे बंदों की ही जरूरत है पाकिस्तान। अरे नहीं कर सकते मैं क्या सरकार, हम अपनी सीट पे थोड़ी सी एफर्ट करते रहते हैं। अच्छा जनाब, और अयाज ऑसम शो। अरे मुश्क जी बड़ी मेहरबानी, मुश्क लैला भी आ गई। मुश्क लैला जी क्या कहने आपके। और फरीन शहजादी, ये सॉन्ग मेरे ऑल टाइम फेवरेट हो गया है। चलें जनाब, आपको पसंद आ रहे हैं गाने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस जी हम तो प्यार बांटने आए हैं, प्यार मोहब्बत से, लोग भले जैसी भी बात करें, हमने तो मोहब्बत बांटनी है। अच्छे लोगों, चवल लोगों, हमने सबके साथ प्यार से ही रहना है। पहली बार सुन रही हूँ गाना, इनको पसंद आ गया संजीदा जी या नहीं आया ये बताया मुझे। आपने डिनर क्या किया? मैंने हक हलाल का डिनर किया है, जब भी एनर्जी आई हुई है। और इसके अलावा गुड एफर्ट। अच्छा जी, और कह रही मुझे बहुत मजा आ रहा है। मिसेस फारूक प्यार है आपका, मोहब्बत।

चलें जनाब, कुछ नए नए गाने सुना रहा हूँ, पुराने गाने मैं सुनाता रहता हूँ आपको। चलें जनाब एक और नया गाना, और मुझे ये भी पसंद आ रहा है ऐसे, जब ही क्यूशीट में रखा मैंने। लीजिए जनाब, चेक करें, मैसेजेस करें, के एच आई स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

जनाब सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर। आए किसी ने मुझे बहुत दिन पहले UB40 का इस ट्रैक की जो है ना रिक्वेस्ट की थी, डोंट ब्रेक माय हार्ट। तो मैंने आज ऐसी बैकग्राउंड के लिए ये गाने रखे हुए कि इंग्लिश गाने बैकग्राउंड में रख ले और इस तरह गाने भी चलते रहेंगे और हम भी जरा एंजॉय करते रहेंगे।

0: Here we go! Full volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud!
2: जना वेलकम बैक सुन रहे एफएम 1 की स्पीड आज जरा तेज है पीयूष की आज बहुत गाने दिल जा रहा है कि सारे ना थोड़े थोड़े करके सुनाता जाऊं टेम्पो भी फास्ट रहता है दो ढाई मिनट के बाद गाना वैसे भी ना बंदा कहता जरा चेंज फुल आरजे कम और डीजे ज्यादा लग रहा हूं मैं ये होता है फर्क थोड़ा चेंज भी होना चाहिए एक जैसा भी रूटीन वाइज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए क्या कहते हो आज भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप अच्छा जी बिल्कुल ठीक अंग्रेजी गाने पसंद आ रहे हैं भाई साहब धमाल प्लेलिस्ट क्या बात है बड़ी मेहरबानी मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया और इसके अलावा गाना पसंद आ गया सामली सलोनी क्या बात है बहुत शुक्रिया संजीदा जी जनाब इसके अलावा हमें मैसेज कह रहे हैं सलीम सलीम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई बहुत अच्छा कहा आपने अच्छी बात सुनने को आजकल हम तैयार नहीं और अगर कोई अच्छी बात करे तो उससे इसी तरह की बिल्कुल सलीम भाई बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं मैं कोशिश करता हूं आप फिक्र ना करें बंदे को डीट होना चाहिए हक बात धड़ल्ले से कहनी चाहिए ये होता ये दिमाग के कुछ मसले मसाइल होते हैं और वो बाज लोग ये चाहते हैं चेंज चाहिए नहीं बाज लोग कहते हैं बस जो रूटीन से चल रही है वही चल रही है जिंदगी में चेंज बहुत जरूरी है दोस्तों अच्छा जनाब एक और ट्रैक और ये भी जरा चेंज की बात की तो ये गाना याद आ गया बंदे की आवाज में तो सुनते हैं खातून की आवाज में सुनते हैं

है है, क्या बात है जनाब। अच्छा जनाब सर, ढोल वाले सॉन्ग आज के प्रोग्राम के बेस्ट सॉन्ग है, सुपर। कौन हो ढोल वाले भाई, क्या नाम है तुम्हारा, नाम तो बताओ। अच्छा जनाब, फरीदा बुरहानुद्दीन कह रही है, बेटा जी किसी को खुशबू लगाना पसंद नहीं होता, इसीलिए लोगों में से बदबू आ रही होती। आंटी मैं यही तो समझा रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए तो जिंदा रहो, उनको तो जिंदा रहने दो। इतनी बदबू के साथ बाहर घूम रहे तो खुशबू लगा लो, डिओडोरेंट बगलों में थोड़ा सा होता है जरा, खासतौर पर गर्मियों में, क्योंकि इसमें आते हैं पसीने ज्यादा। मेरा काम है समझाना, आगे आपकी मर्जी। अब्दुल गफार कह रहे हैं वंडरफुल ट्रैक भाई, फीमेल वॉइस में। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। इफ आई डोंट हैव यू, बैकग्राउंड में ये ट्रैक भी कमाल है दोस्तों। अच्छा जनाब, इसी तरह ही मैंने एक अजीब सा गाना सुना, मैंने उसको भी क्यूशन में शामिल कर लिया। गुफरान भाई तशरीफ ला चुके हैं जनाब, गुफरान भाई आपके लिए।

0: ज़ालिमा का समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन ज़ालिमा ने मजा करा दिया। अच्छा उनका कोई और मतलब होगा उनकी लैंग्वेज में ज़ालिमा, लेकिन हम तो उर्दू वाला ही समझ रहे हैं। वे ज़ालिमा के थे ये पंजाबी वालों। बिलावल कहने सर हक की बात जो है करते रहना चाहिए, अल्लाह आपका साथ है। आमीन। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बिलावल भाई है, मैं तो करता रहता हूँ भैया। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है और कैसे मिजाज है? वेटिंग फॉर मी मजाक जानी, काफी बिजी पर SMS आपके लिए, नाइस सॉन्ग। इतना रोमांटिक कौन चल रहा है भाई, कौन चल रहा है इतना रोमांटिक? वैसे आप सुन रहे हैं FM 100 और एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: FM 24/7 365
7: Active, yummy, adorable,
8: zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

वेलकम जनाब, वेलकम। क्या बात, जबरदस्त ट्रैक है ये भी। अच्छा जनाब, मैसेजेस करें के चार स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636। आज कह रहे हैं जालमा ठंडा कोला पिला दे, ओ नहीं कर, ज्यादा कोले मत पिया करो, सेहत के लिए सही नहीं है। हालांकि बास चीजों का पता होता है कि ये सेहत के लिए सही नहीं है, जैसे कि मुझे पता कोला सही नहीं, लेकिन इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं कितने जाऊं। और पंजाब में तो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं, हर चीज का इलाज कोला, सेवन अप। किडनी का मसला हो, दिमागी मसले हो, सिर्फ सेवन अप।

अच्छा जनाब मैसेज आ गया, बोल रहे हैं यार कि वो गिलगित में जो इलेक्शन है उस बार, अब सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँ, आप सबको बताएं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैं बात करता हूँ आप लोग कहते हैं एक ही हो गया। हमारा प्रोग्राम है बस थोड़ा सा दो घंटे का तफरी फुल टाइम, और एक बात बार बार बोल के एम ही शर्मिंदा, उनको भी पता कि उन्होंने क्या करना है और हमें भी पता कि हमने क्या करना है, बस बुरे को बुरा माने ये मैं आपसे कहूंगा, गलत बात को गलत समझे आप। अच्छा जनाब इसी बात पर ये खूबसूरत सा ट्रैक और वो है कैसे, हाँ है कूल सा पंजाबी नंबर इस गर्म मौसम में। बहन और भाइयों अगले पायदान पर

भाई जरा वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। माँ जमीन क्या हाल है आपके? कह रही आज इस्लामाबाद में गर्मी थी तो मरी चली गई। ये देखो ये मजे हैं इस्लामाबाद के लोगों के, जैसी गर्मी महसूस होती इस्लामाबाद मरी, वहां भी अगर इतनी ठंड नहीं है तो नथिया गली से भी उते मजे हैं सर आप लोग। कराची में कहा हैदराबाद, अब बोलो, अब मैं कुछ बोलूंगा तो कहोगे देखो फिर बुराई करने लगा। हैदराबाद जाके क्या करोगे? बॉम्बे केक, उससे अच्छे केक तो कराची में मिलना है। इतना रश, इतने परेशान होके लाइनों में लग के नॉर्मल से केक खा के, तो मतलब चीज हो ना कोई, मैं किथे जाऊं? और हैदराबाद में क्या है मुझे ये बताए यार, कम से कम हैदराबाद को तो अच्छा बना लेते हैं। तो हैदराबाद में भी कोई ऐसी चीज होते है, बंदा वैसे ही चला जाए, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाए, जरा घूम फिर के आ जाए, कुछ भी नहीं, हाला नाका की बस कड़ाइयां, पक्का खाना खा लो जो भैया तफरी हमारी। अब्दुल गफ्फार, कोल्ड ड्रिंक को शरबत की तरह नहीं पीना चाहिए बेटा, और क्या, उसको बिठा के कपड़े पहना के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा के कुर्सी के सामने बिठा के आंखों में आंखें डाल के फिर हमें पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब्दुल गफ्फार भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा जनाब बिलावल कहना सर फैंटास्टिक सॉन्ग, तो सारे फैंटास्टिक। अच्छा जी इसके अलावा न्याज बहादुर भाई, मुझे अयास कहते हैं यार, क्या हो गया यार तुम्हें, आवाज की समझ नहीं आ रही, इतने दिनों से सुन रहे हो न्याज बहादुर, टाइमिंग कभी नहीं पता। यूसुफ भाई कैसे हो? कह रहे अस्सलाम वालेकुम अयास भाई। वालेकुम सलाम, पापोश से मैसेज किया है और सब सुनने वालों को सलाम, नाम भी लिखे हैं सारे, मैं पढ़ नहीं रहा, बहुत नाम है। महानूर कह रहे भाई आपकी आवाज नदीम भाई के आवाज एक जैसी नहीं, भाई बिल्कुल दो मुख्तलिफ बंदे, डीएनए करवा लूंगा, बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी। जरी नूर के मैसेज आगे, सलाम कैसे हो, सबको सलाम, वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। कमल कह रही है, कमल सवेरा और हमारी पुप्पो हाजरा, हाजरा पुप्पो कैसी हो, ठीक हो, आपका प्रोग्राम शौक से सुन रही है, शौक से सुन रही हो, अच्छा कोई अच्छा सा सिंधी, बाबा मैं मास्टर चाहता हूँ सिंधी गाना आज बिल्कुल नहीं है, अरबी लगा दूंगा कहो तो, ना हमें सिंधी समझ आ रही ना अरबी समझ आ रही है, तो अरबी थोड़ा सा चेक करवाता हूँ, ये ले आजरा पुप्पो चेक करो दीदी गाना, ये सिंधी अभी छोड़ो गाना, इसको देखो इसमें सिंधी ढूंढो, अरबी गाने भी कमाल होते हैं।

हाय हाय, क्या बात है जनाब। दीदी तो कैसे हो? दीदी महनूर कहनी भाई, कभी दोनों साथ बैठे ताकि हमें ये कि हम दोनों साथ बैठ के भी शो कर रहे किए हैं काफी सारे, और कभी कभी खड़े होके भी कर लिए, कुर्सी का मसला हो जाता था। अच्छा भाई, गया सुदीन बलवंत, क्या याद दिला दिया दीदी पिंकी, वाह वाह वाह वाह। सीबी के पुराने ये किससे मुझे याद दिला भाई। दो बहनें होती थी, शॉपिंग करने आ रही थी दोनों साथ, दीदी पिंकी नाम था, अजीब जलपरी टाइप की, और ठीक उसी टाइम आती थी जब हम सारे क्रिकेट खेल रहे होते थे। भाई तुम क्रिकेट से पहले चले जाओ या बाद में आ जाओ, नहीं उसी टाइम। अब बेचारियों के पता नहीं क्या मसले होंगे, लेकिन सारे जो है ना बस फिर देख रहे होते थे क्या बोने, अब इस पे खुद भी ख्याल करना होता लोगों। लेकिन चलो खैर, दीदी पिंकी याद दिला दिया गयासुद्दीन बलवंत ने। सीवियों की क्या जान, अच्छा गाड़ी में। हाँ जनाब, ये एक मुझे याद है जब ये गाना हिट हुआ था तो सीवियो हम रहा करते थे, तो उसमें ऐसी गाड़ियों में ये चला करता था, खास तौर पे वेस्पा पे, वो जो दो स्पीकर बाहर निकले होते ना, पता नहीं वो कैसा साउंड लगवा के आते थे भाई, पूरे डिफेंस में वो गाना गूंज रहा है इतना जोरदार। हालांकि वेस्पा पे लगा हुआ, ये भी नहीं कि बड़ा कोई स्पीकर हो, पूरा सीवियो की जो रोड है ना उस पर वो गाना ये वाला चल रहा था। फिर वो इंडिया वालों ने भी बनाया, एक वो गाना बनाया था ओए ओए, वो भी ओफो इतना प्ले किया उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया उस गाने का भाई। बड़ा जरा सीरियस सा गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, पता है कौन सा?

0: We'll be right back after this commercial break.
1: Oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga sehatmand daant, sehatmand zindagi. Program mein hamari mehman hongi Dr. Shikhu Naz, Associate Professor, Budh 10 June, 2 baje, sirf FM 100 par. Dental Room by Platinum Pharma.
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर 10:40 ए टाइम क्या बात है इस ट्रैक की भी अच्छा जनाब गुड शो जब भी सुनो हम हैप्पी हो जाते हैं मैं क्या क्या बात है जनाब बड़ी मेहरबानी और शहजादी पूछ रही है क्या खा के आए हैं फुल टाइम एनर्जेटिक सच बताऊं तो आज मैं खा के नहीं आया अभी जाऊंगा आराम से खाऊंगा खाली पेट हूं इस वजह से ना अपनी तरफ से एनर्जी आ रही है गैस तो नहीं आ रही मैंने मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है अच्छा अयाज मेरे क्या मेरा फार्म हाउस के वॉशरूम गंदे तो कैसे साफ करूं कोई तरीका बताओ मैं कह रहा हूं जबान से कर लो तुम कोई बंदा नहीं मिल रहा तो मुझसे क्यों पूछ रहे बेटा मेरे को मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है साफ रख बस सबसे पहले तो तू खुद साफ हो उसके बाद जो है ना बंदा ढूंढ कोई अच्छा और उसके सर के ऊपर खड़े होकर निगरानी कराओ ये होता ना ऑर्डर करके चले गया फिर वो गंदा ही रहता खड़े होके ऊपर जरा देखो कैसा कोई चीज साफ हो रही है कि नहीं हो रही मुझसे पूछ रहा भाई कैसे साफ होंगे अच्छा जनाब जरी नूर कह रही है आज का शो सुपर डुपर अरे बड़ी मेहरबानी अच्छा भाई एक बड़ा रोमांटिक सा गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ और वो है कैसा अच्छा टाइम कम है तो मैं कोशिश करूंगा जरा जल्दी जल्दी सॉन्ग्स को जरा मुख्तसर करके और फिर टाटा बाय बाय करेंगे हाय हाय हाय हाय क्या बात है

ओए जनाब टाइम कह रहा है कि जल्दी जल्दी भैया। और शयान आयशा भी हमें सुन रही है। शयान आयशा, आयशा शयान होना चाहिए था। शयान आयशा दसो मेनू जरा की स्टोरी है।

और कह रहे हैं ये जो मैसेज पे वॉशरूम क्लीनिंग की फजूल कन्वर्सेशन, हाँ ये अच्छी बात कर दो तो वो लोग कॉमेडी में चले जाते हैं। मैं कितने जावा, मैं की करा। राइट जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने।

सनम ओ जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर

जबरदस्त शो करते हैं वो। नेक्स्ट शो तक के लिए अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

सुनवाएं जनाब, सैक्सोफोन सुनता हूँ और ये वाली ट्यून सुनता हूँ, वलीमे की फिल्म याद आ जाती है, लोग खाने खा रहे होते और बैकग्राउंड में ये वाला म्यूजिक अक्सर ये होता था। अब तो खैर कम हो गया ये वाला सिलसिला। आय हाय, संजीदा जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, इतनी तारीफें, इतनी अप्रिसिएशन आपकी तरफ से, थैंक्स अ लॉट। और भाई कहनी भाई, आज के शो की तारीफ के लिए लफ्ज नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की ये मोहब्बत है बेहतरीन है, लफ्ज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं भाई जनाब। और आखिर में ये ट्रैक उन तमाम दोस्तों के लिए जो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतने प्यार हमें दे रहे हैं जनाब। इसके बाद नदीम अख्तर।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Music Twister.
6: What's the music?
5: With any

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, दिल लेकर मुकर गया है। वाह वाह वाह भाई, क्या फरमाइश थी। ओके टेक, फिल्म थी शिकार, फिल्म का नाम भी बताया था, आवाज थी माला बेगम की। तो सुने हो मैसेजेस आपके पहले से आना शुरू हो चुके हैं। तो पहला मैसेज जनाब फीता काटा हमारे प्यारे से भाई यूसुफ भाई ने बाबू से, और कहते हैं कि तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम, डॉक्टर इमरान भाई खिताब लाला गुफरान भाई और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम का, वालेकुम असलाम। यूसुफ भाई कैसे हैं आप, हमारी भाभी कैसी हैं, घर में सब खैरियत है, बच्चे बच्चे ओके टेक। कॉल तो खैर हो नहीं रही है आजकल, वरना कॉल पर आपसे बात हो जाती तो अच्छा लगता। सलाम कहिएगा आसिफ अली क्लिफ्टन, तो कह रहे हैं सुने हो सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स। सर मिजाज शरीफ कैसे यार, बहुत ही ओके ठीक, और क्या हाल है, और हाल भी बेहाल। आपने शुक्री सराय की सॉन्ग प्ले नहीं किया था, तुमने पहले खुदा हाफिज कह दिया था। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जांदी है, ये चलाया था, सेकंड लास्ट गाना था शो का, और आप भाग गए थे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। सोबिया कह रही हैं सर ओल्ड शादी के सॉन्ग मेरी नानी की रिक्वेस्ट है, मेरी शादी हो रही है, थैंक्स आई सो स्वीट दे सादा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। नानी से पूछो ये वाला चला दूं, अमड़ी दीदी ली दो सहारा, क्या मशहूर हुआ था ये ट्रैक। और आप ये देखें कि ऑलमोस्ट तकरीबन 40-50 साल पुराना ये ट्रैक है, बल्कि हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, और लेकिन आज भी ये गाना बहुत मशहूर है। निवीर मेरा घोड़ी चढ़ेगा, यानी कि हमारा भाई घोड़ सवार बन गया, वो भी दूल्हे वाला। जमाने जमाने की बात है, बहने कितनी चाहत से प्यार से भाई को दूल्हा बनाती है, और आज भी ये जज्बा बहनों में मौजूद है, ये भाइयों को बहुत प्यार से मोहब्बत से दूल्हा बनाती है, और शादी के बाद धुलाई करती है, दोनों तरफ से धुलाई हो रही होती है, बेगम की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी। सलाम प्यारे भाई कैसे हैं, वाले साहब संजू और सबको सलाम। जरीन नूर, जरीन नूर मुझे कुछ नाराज नाराज सी लग रही, मेरी बहन क्या हुआ है, कल के शो में भी तुम्हारे सिर्फ एक दो मैसेज आए और सूखे सूखे से लग रहे थे, कुछ या तो नाराज है तो या फिर उदास है, कोई ना कोई वजह है मेरी प्यारी सी बहन, बताओ जरा, खुश हो जाओ, ओके टेक हो जाओ। हैं जी ते हैं जी, खुशबू आ रही है भाई पूरे स्टूडियो में। अरे मुश्क का मैसेज आ गया है, अरे जिन आपकी बादशाहत में जबरदस्त जी रहे हैं, क्या बात है, और बहुत खुश है अल्लाह का शुक्र, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, और तमाम सुनने वालों को सलाम भी गाए भाई, क्या बात है, क्या बात है, जीती रहो मुश्क। फरहीन शहजादी कह रही है हबीबी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, और सुने हो तुसी आ गए हो, जी बिल्कुल असी आ गए, तुसी सुन के ही भेजा है मैसेज। हैं जी ते हैं जी, अरे भाई मिठाइयां बांटो मिठाइयां बांटो, क्योंकि आज आ गई है संजू जी। यार संजू क्या किया तुमने, इतना लंबा चौड़ा खत, देखो 3-4 दिन के इन्होंने मैसेज एक साथ कर दिए, संजू गायब जो थी। कहती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम खुशामदीद कहती हूँ, आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहे। आज मेरी बहुत ही प्यारी नौरीन जी की सालगिरह है, अल्लाह जी वाकई में हमें तो पता ही नहीं था। दो पोस्ट कर रही हूँ, मुनासिब लगे तो शामिल कीजिएगा, मुनासिब क्यों लगे मतलब, संजू क्या हो गया तुम्हें, मुनासिब लगी तो मैं, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, फिर इस तरह नहीं किए थे, जजाक अल्लाह भी गाए। और आपको वैसे मैं संजू आपकी गोश गुजार कर दूं, म्यूजिकल शो में हमने 12 बजे के बाद नौरीन को विश किया था और टिका के आपकी जानिब से भी, जाहिर एफएम 100 की फैमिली में आप, और आज वो मसरूफ है, उन्होंने एडवांस में कह दिया था, लेकिन फिर भी हम उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। बहुत ही प्यारी अजीजी काबले एहतराम नौरीन बहना, आपको सालगिरह बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो और आपका दामन हमेशा खुशियों और मुस्कुराहटों से भरा रहे, हमेशा फूलों की तरह खिलती और मुस्कुराती रहें, इलाही आमीन। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो तुझे, ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो, सदा बहार रहें जिंदगी की रानाई, ये दिन तुझे कई बार और भी मुबारक हो, रफाकतें और बुलंदी भी तुझ पर नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे, छुपाए रखे जमाने के सभी गम तुझसे, हर एक घड़ी तुझे वो बेमिसाल खुशी अता करे, दुआएं मांगती हूँ लब पे मुस्कुराहट के साथ, मुबारक तुझको ये दिन ए दोस्त जिंदगी भर के साथ। सालगिरह मुबारक नौरीन बहना, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन और दुआओं भरे लफ्जों से जो है आपको विश किया गया है संजू की जानिब से, और हमारी जानिब से भी आपको सालगिरह एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। सालगिरह मुबारक नौरीन बहना, मैंने चाहा तेरे जन्म दिन पर ऐसा तोहफा तेरी नजर करूं जिसे तू उम्र भर याद रखे, फिर एक लम्हे की सोच ने मेरे हाथ बुलंद किए कि आने वाले मौसमों में गम की घटाएं कभी तेरे करीब ना आए, तेरी आंखों के जुगनू सदा चमकें, खुदा तेरे दामन को हमेशा मुसर्रतों से हमकिनार करे, कभी जो तू जिंदगी की कड़ी धूप में ढलती उम्र की शाम में पलट कर देखे तो बहुत सी खुश रंग यादें तेरे वीरान दिल को बहार कर दे, तू हर गुजरे लम्हे से प्यार करे और खुदाए बुजुर्ग बरकत तेरी उम्र दराज करे, सभी के हाथ उठे हैं इसी दुआ के लिए, मेरे दिल से दुआओं के खजाने निकले, आज दिल से मेरे वो तराने निकले, तेरी सालगिरह पे ए मेरी दोस्त लफ्ज शायरी के कितने सुहाने निकले, मेरे लफ्ज फूले ना समाए दोस्त, दिल के अरमान मेरे लफ्जों के बहाने निकले। सालगिरह मुबारक हो, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हमेशा मेरे साथ रहें, आपकी दोस्ती आपका प्यार कभी नहीं भूल सकती, कह रही हैं संजू। भाई हम समझ रहे थे खत है, मगर ये तो इतने खूबसूरत लफ्जों के चुनाव के साथ, मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ सालगिरह विश की गई है। और वैसे संजू हम आपसे नाराज हैं, हमें आपने इस तरह कभी विश नहीं किया है, मगर इसमें वाकई में अकीदत और मोहब्बत और प्यार छलक रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके और मैसेजेस की जानब, और देखता कौन हमारे साथ, नहीं देखते क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक की जानब।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं। जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 24/7 365 वेलकम बैक। आएंगे सुने आप सबको, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुने। अच्छा जनाब, आपके और मैसेजेस की जानेब भी बढ़ना था भाई। हमारे मोहम्मद काशिफ साहब आगे ने, काशिफ भाई कह रहे हैं सबको सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं भी शो में आ गया हूँ, खुशी खुशी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे भाई। अब तो ओल्डी गोल्डी सॉन्ग्स प्ले हो गए। अस्सलाम वालेकुम संजीदा, आप ही कैसी हैं, मिजाज कैसे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू नौरीन, आपा जीती रहें, सदा खुश रहें। मैं 11:10 से शो सुन रहा हूं भाई। आपने माला जी का सॉन्ग अभी तो प्ले नहीं किया है भाईजन, कर दिया है काशिफ भाई। आप यकीन माने गाना सबसे पहले वही वाला गाना प्ले किया था, ये वाला गाना था। आपका मैसेज भी पढ़ता रहता हूं। आपने 10 मिनट में वो गाना गवा दिया जो कि आपके लिए चलाना था। और कह रहे हैं आपने माला जी प्ले तो नहीं किया भाई। मैंने जो आपको

0: मेरे शहजादे चल चुका है, अब तुम्हारी सजा है, तुम शो के बाद भी 10 मिनट सुनते रहो, यानी कि समझ रहे ना। संजू कह रही हैं जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत उमदगी से पढ़ा है अल्लाह। वो घर की तकरीब में मौका देखकर सुन रही हैं। उफ अल्लाह जी, सब पता है इसको, बता दिया था कि आपको भेजूंगी। एक बार फिर दिल से जजाकल्ला। संजू तुम जो है ना तस्बीह वस्बी करना शुरू कर दो, पढ़ के फूकना शुरू कर दो, ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं क्या लग रहा है भाई, आपका चहकना कहाँ गया भाई। कहती है मेरी कहती, क्या कहती है मेरी कहती, मेरी फैमिली बहुत सख्त है, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर जाते हुए देख लिया। मैं तो फिर, कहती अम्मी ने रिक्शे के पैसे वापस ले लिए। ये मुश्क ने भेजा है, एक लड़की है, इसका नाम है कहती, और वो कहती है कि मैं कहती हूँ मेरी फैमिली बहुत सख्त है, आज मेरी अम्मी ने ना मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर जाते हुए देख लिया। तो मैं से मुराद लड़का, तो फिर क्या हुआ। और लड़की कहती है अम्मी ने रिक्शे के पैसे वापस ले लिए। क्या अम्मी है भाई, इतनी सख्त फैमिली है, ना करो भाई मुझे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, और अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी आपका मैसेज जो है वो इधर उधर ना हो। इस पर पहले करो मार्क। ओके,
1: सलाम प्यारे भाई।
0: अच्छा ये तो जरीन नूर का मैसेज तो हमने पढ़ा, बहुत सारी बातें भी की, और इसका मैसेज दोबारा नहीं आएगा मुझे पता है। महानूर कह रही है आसिफ भाई हमारे बाबू कैसे मिजाज शरीफ नहीं मस्ती है। महानूर, आसिफ भाई हमारे बाबू के मिजाज शरीफ नहीं मस्त है। ओके ओके, ये आसिफ का जवाब दे रही है कि मिजाज शरीफ कैसे। सॉन्ग मुझे दिल से ना भूलाना, संजू के लिए जनीन कह रही है। संजू तुम्हें नहीं भुलाएगी जरीन नूर, वो एक दफा जिसको याद कर ले फिर उसको नहीं भूलती, हमको पता है। तुम वो गाना क्यों डेडिकेट कर रही हो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए चलाएंगे मुझे दिल से हाय हाय हाय हाय न भुलाना।

महनाज और आसिफ क्या नाम है आलमगीर, वाह वाह वाह वाह क्या गाना याद दिला दिया। नानी ने कहा ये सॉन्ग प्ले कर दें, ये कौन सा गाना है, गाना भी तो लिखो। ए सोबिया तुम्हारी शादी हो गई, भूल गई गाना भी, भूल गई कि नानी ने कोई गाना भी कहा था। नानी ने कौन सा गाना गाया है, ये गाना कौन सा है, मतलब ये लिख दिया बस, ये गाना हम बोला है। कौन सा देसा था राजा, वो मैं जो गुनगुना रहा था, ये कोई और। इफ्तिखार मेरा शहजादा आ गया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई क्या हाल है, ओ जी ओ गुड, सलामत रहे नदीम भाई।

0: अबे देखी ये बगैर, अरे भाई आसिफ निकल आ भाई इस बेवफाई की दुनिया से, निकल आओ बाहर। लेकिन हम चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे। अरे भाई एक बात और बता दूं आपको, फरमाइशें कल भी इतनी बेतहाशा थी लेकिन फिर भी मैं इतना ढीठ हूं कि सब चलाएंगे। लेकिन आज इफ्तखार भाई की फरमाइश जरूर पूरी करनी है मैंने, कल नहीं की थी। इफ्तखार भाई कल भी तो आपने कोई फिल्मी गाना गाया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो तो गजल थी अजनबी शहर के, याद आ गया मुझे। तो आज इन्होंने बिल्कुल शो के हिसाब से ही फरमाइश की है ताकि मैं इनकार भी ना कर सकूं। तो इफ्तखार भाई आपका गाना जरूर चलेगा। बस उदास थी, अब ठीक हो गई। उदास क्यों थी, वजह क्या थी? कमेटी समेटी नहीं निकली, खाना नहीं खाया, बताओ। जरीन नूर का मैसेज पढ़ रहा था मैं।
1: और मेरा ख्याल है मुझे गाने की जानिब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए?
0: जाना चाहिए। अभी जिस ट्रैक की जाने जा रहे हैं हम, और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट करेंगे जनाब जरीन नूर को। नहीं जरीन नूर को नहीं, नौरीन तौसीफ। इन दोनों के मैसेज नामों में ना मैं अक्सर गबल्ला कर जाता हूँ, तो लिहाजा कभी भी गबल्ला किया करूं जरीन नूर और नौरीन तौसीफ। नूर और नौरीन यानी कि समझ रहे ना आप, तो मैं गबल्ला कर जाता हूं। तो कभी गबल्ला कर लूं तो आप समझ जाया करें। तो ये खैर ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं नौरीन तौसीफ को संजू की जानिब से उनकी सालगिरह के मौके पे। एलो फड़ो।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको. कल भी तुमसे प्यार था मुझको. नरेन क्या गाना है भाई, क्या गाना, जबरदस्त डेडिकेट किया हुआ है तुमको. समझो मैं, खैर वो अभी पता नहीं सुन रही है कि नहीं सुन रही है. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. मैंने मोहब्बत को बड़ी फुर्सत से और तफसील से सोचा, समझा, परखा, जांचा, नापा, तोला, कुरेदा, खंगाला, गहराई में जाके महसूस किया तो ये जाना कि मोहब्बत सिर्फ भरोसे पे खड़ी है. यकीन की ऊंची सी दीवार पर बना एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें कैद पंछी दाएं न बाएं देखता है, आगे न पीछे देखता है, यहां न वहां देखता है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचा आसमान देखता है और अपने कदमों तले सारा जहान देखता है. मुझ की इतना सीरियस मैसेज कैसे कर दिया तुमने, हैरत अंगेज बात है. मैं सोच रहा था कि एंड में कोई ना कोई ट्विस्ट होगा, लेकिन एंड में जो ट्विस्ट था वो सिर्फ कायनात के लिए बेस्ट विशेज हैं. भाई तुम अपनी बात करो, अब तुम्हें ये खिताब मिला हुआ है शोको चंचल चुलबुली, यानी कि समझ रही हो ना भाई, बड़े मैसेज आ रहे हैं, क्या बात है. अरे भाई वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप कैसे, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन. और संजीदा बहना, मेरी प्यारी सी बहना, मैंने आपकी भेजी दुआओं और प्यार से भरपूर बर्थडे विश सुना, सच में रो पड़ी. हाय सो स्वीट, इतने प्यारे अल्फाज के साथ के मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं. शुक्रिया अदा करने के लिए, सदा खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला हमारे बेलौस प्यार को बुरी नजर से महफूज रखे, आमीन सुमामी. और जिसने इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा है, जिस बंदे ने, एक अदद भाई भी है आपका यहाँ पर, यानी कि समझ रही है ना, बोल देती नदीम भाई आपने बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत प्यारा पढ़ा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं बनाना, यानी कि समझ रही है ना. और अभी आपको गाना भी डेडिकेट किया उन्होंने, हाँ गाना सुना आपने, कैसा लगा. और फरीन शहजादी करी, हजारों खुशियां ऐसी कि हर खुशी पे दम निकले, बड़ी सड़ी हुई गर्मी है, घर से बाहर कम निकले. ओ ग्रेट है जी, गर्मी के हिसाब से ओके टेक. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बड़ी सड़ी हुई गर्मी है, घर से बाहर कम निकले. वाह वाह वाह वाह वाह भाई, मजा आया मजा आया मजा आया. नौरीन कह रही है बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जरीन नूर, नसरीन बहना, आपकी प्यारी प्यारी सी दुआओं का जजाक अल्लाह. अरे मैं मजाक कर रहा था, आपने मैसेज कर दिया. और आ गया भाई मुल्तान की गरम गरम हवाओं के साथ गयास भाई. अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और सब सुनने वालों को. वाह वाह बहुत खूब गाया जनाब, एवं ही गाया हमने, यानी कि समझ रहे ना. गयास भाई आपको तो गर्मी नहीं लगती होगी, तीन तीन बीवियां हैं जो, लाइट भी जाती होगी तो तीन पर होते हैं ना पंखे के, बस आपके चारों आपके घर घूमती होंगी. तीनों घूम रही होगी तो पर हवाएं. काशिफ भाई कह रहे हैं जी अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो सुन लूंगा, सुनता हूँ अक्सर. यहाँ पर सुनने का मजा ही कुछ और है भाई, आप जाकर इंटरनेट पर जितना मर्जी से सुन लें. बहुत शुक्रिया आपने पीला सॉन्ग ही मेरी फरमाइश पे प्ले कर दी, मैं मसरूफ था सुन नहीं सका, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. और फरीदा बुरहानुद्दीन मेरी प्यारी बहन आ गई है और कह रही है आपकी तबीयत कैसी
5: है. बस अब मैं क्या बोलूँ, पेट में बस कुछ गड़बड़ हो रही है भैया. मेरी तरफ से नूरीन तौसीफ को हैप्पी बर्थडे
4: और प्यार भरा सलाम. वालेकुम अस्सलाम,
5: ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
3: ਟਵਿਸਟ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੋਸਟ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਟੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਟਵਿਸਟ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਬੰਦੀ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਚੁੜੈਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਚੁੜੈਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੋ ਆਪ ਕਿਸੀ ਹੋਗੀ।
4: ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੇ ਟਰੈਕ ਕੀ ਜਾਨਿਬ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਯੂਕੇ ਸੇ, ਜਾਵੇਦ ਭਾਈ, ਅਯਾਜ਼ ਭਾਈ, ਚਾਚੀ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਹੈ, ਪਲੇ ਸੌਂਗ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੋਹਨ ਜੋ ਦਾੜੋ, ਮੋਹਨ ਜੋ ਦਾੜੋ ਮੇ ਇੱਕ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ। ਅਭੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਆ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੋਹਨਜੋ ਦਾੜੋ ਮੇ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਤਾਈਏ ਭਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਭਾਈ। ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਲਈ ਹੋਗੀ ਇਸੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਅਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਾ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਮੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ, ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਓਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪਿਨਰ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਨਾ ਮੁਝੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਮੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਟਿਪ ਵੀ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਬਾਤ ਵੀ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਤਾਮੀਰ ਔਰ ਬੇਬੀ ਅਨਾਇਆ, ਤਾਮੀਰ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ? ਨਰੀ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਹਮਨੇ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ, ਹਮੇ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਅਨਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਮੀਰ ਭਾਈ, ਹਮਾਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਯੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ।
5: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
3: ਪਤਾ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਸਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ, ਚੁੜੈਲ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰੇ ਉਨਕੋ ਭੂਲ ਬੋਲ ਦੇ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੁੜੈਲ ਕੋ ਵੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਵੈਸੇ ਚੁੜੈਲੋਂ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯੇ ਬਤਾਏ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਚਲੇ ਬਾਈ, ਅਭੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਕੀ ਜਾਨਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਹਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੋ ਫੜੋ।

0: वेलकम बैक। हमसे बदल गया वो, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई पता है, बताऊं जुबान कैसी है, तुम क्या बताओगी, पूरे घर वाले बताएंगे तुम्हारी जुबान कैसी है। नानी तो कहती होगी इतनी बड़ी जुबान है इसकी। मजाक कर रहा हूँ, तेरी बताऊं जुबान कैसी है, मैचिंग की है, गुलाबी गुलाबी सी। हाय अल्लाजी। इतने दुखी आत्मा वाले सॉन्ग, उफ। 6 दिन की जिंदगानी दो जिंगर में, दो क्लब सैंडविच में और दो जानू बर्गर में गुजार। जानू बर्गर मशहूर हो गया भाई। जानू पता नहीं सुन रहा है या नहीं सुन रहा, अरे सुनता है तो मुझे मैसेज जरूर करता है भाई। और कितने गए मैसेज थोड़े, एक मिनट, स्क्रॉलिंग। हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप, FM 100 की ऑल फैमिली को सलाम। शहजाद बाबू कैसा। और एक और मैसेज, नदीम भाई सलाम के बाद कहा है, नदीम भाई कैसे हैं आप, आपके शो सुनता हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, उम्मीद है मेरा मैसेज जरूर शामिल करेंगे, कर लिया। शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। 10 जून को मेरे भतीजे मीर हमजा की सालगिरह है। अपनी आवाज पे कोई सॉन्ग विश करना, फ्रॉम समीना बलोच। समीना आपके भतीजे को हम विश जरूर करेंगे, हैं जी जी हैं जी, और वो भी अपनी आवाज में। और आगे बढ़ते हैं जनाब, नईम अवान साहब कह रहे हैं, आई लव अयाज एंड और नदीम भाई, आप लोग जो ओल्ड सॉन्ग लगाते हो मेरी रूह को बहुत तस्कीन मिलती है, थैंक यू। नईम अवान भाई शुक्रिया यार, बहुत बहुत रूह को तस्कीन। वैसे कहते भी ना, मौसीकी रूह की खजा है, हैं जी ते हैं जी। शहजाद बाब, ये अभी जो आपने मैसेज किया है जिसमें पता नहीं समी की शादी हो गई यही लिखा हुआ था, अबे भाई स्पेस तो दे दिया, अगर समी लिखने के बाद स्पेस और की के बाद स्पेस और शादी के बाद स्पेस, सारा एक साथ ही लिख दिया, ये तो अब उनका दिमाग बहुत तेज है भाई कि हमने पढ़ लिया। समी की शादी होने वाली है, दुआ करो जल्दी हो जाए। और हमारा भाई शहजादा सलीम मेमन भी आ गया है। सलीम मेमन कहते हैं, सलाम सुने हो हमारे दोस्त मुस्तफा भाई, आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं और आपको खास सलाम कहा है क्योंकि उनको SMS करना नहीं आता, एक सॉन्ग फरमाइश की है। ओए होए होए होए होए भाई, मुस्तफा भाई आपके लिए गाना जरूर चलाएंगे, डोंट वरी, चलाएंगे
1: हबीबी।
0: और उन्होंने कहा है कि सुनो, मैं कभी लड़कियों को नहीं चिढ़ाता, मुझे पता है जो लड़की रात दिन बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। बहुत अकलमंद है भाई आप, जो बर्तन नहीं धोती ना वो भी धो सकती है, बस इंसान की हरकतें दुरुस्त रहनी चाहिए। इसी बात पर जाएंगे एक ब्रेक की जाने।
2: This program is brought to you by AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
0: वेलकम बैक। सुने हो, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो यानी सुने हो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ। आज है ओल्डी गोल्डी क्लासिक, पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स हम आपको सुना रहे। शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर, यानी कि समझ रहे ना। अभी बढ़ेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश की जानिब, और ये ट्रैक जो है वो डेडिकेट किया गया है संजू को, और किन्होंने किया है जनाब, द वन एंड ओनली जरीन नूर ने। तो जरीन नूर की जानिब से संजू आपके लिए गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक सुनियो। हाय मुझे दिल से ना बुलाना यार, क्या स्वीट ट्रैक है और अजीब सा मूड कर दिया इसने भाई। तानिया संजीवी आ गई हैं, वेलकम कहेंगे उनको जनाब। तमाम ही खूबसूरत समातों को उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम और अभी शो सुनना शुरू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाने उनके भी दिल पर लग रहे हैं, क्या गाने चल रहे हैं भाई आज, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। चला कौन रहा है आखिर, चला कौन जी है। नियाज बहादुर आ गए हैं बल्दिया टाउन से और कह रहे हैं नदीम भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और सलाम। मेरी तरफ से अयूब भाई और मानूर को सलाम, एक सॉन्ग की फरमाइश है, फिल्म का नाम है जिंदगी है नगमा, गाने के बोल हैं एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ओके कर देंगे जनाब रेडी गेट। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी आवाज भी सुनी, अपनी आवाज भी सुनाओ हबीबी। ये कौन है हबीबी, हबीबी अपना नाम तो लिखो हबीबी, तारीफें इतनी कर दी हमारी। मानूर करिए बाबू, मंगनी के बाद लड़की पर्दा करे करते है और आपके शो में लड़का पर्दा कर रहा है जैसे समी भाई

ऐसे समी भाई बात तो अच्छी की है आपने, बहुत अच्छी की है। समी भाई पर्दा कर रहे हैं आजकल, फुल टाइम पर्दा कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है। यासीन सोलंगी कह रहे हैं शाह लतीफ टाउन से, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, सबको सलाम मेरी तरफ से। सर ये दिल आपका हुआ, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू यार, मेरा भी दिल आपका हुआ। बाबू कल इस्लामाबाद जा रहे हो, नानी हज से आ रही हैं, कल इस्लामाबाद आप जा रही हो? हमारे अयूब लाला भी सफर हैं, दौराने सफर में, तो उनके लिए ढेर सारी दुआएं, खैर से जाएं ते खैर ना जाओ ते खैर ना लाओ, गाने की डेडिकेशन उन्होंने की हुई, मैसेज अभी पढ़ूंगा उनका। और बाबा जान

रेहान अली, रहमान अली, रियाज अली जोखियो काठोर से एन। अच्छा जी, इनके दोस्त के बाबा जान का इंतकाल हो गया है और वो कह रहे हैं कि उनके लिए ढेरों दुआई कीजिए। रेहान अली, रहमान अली, रियाज अली जोखियो भाई, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। राजीऊन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। सब लोग एक दफा पढ़ लीजिए और दुआ कर लीजिए। तो अब शोको चंचल का जो है ना, हम मैसेज पढ़ते हैं जनाब। ओए होए, इतने सारे गलत कहते हैं भाई, मौसीकी रूह की गिजा है। और कह रही है ये पोस्ट अच्छी है, जरा ये पढ़ लीजिए आप, मुझे तो अच्छी लगी थी। When someone asked, तुम लोगों को खोने से डरते हो क्या? तुम्हें खोने से भी कोई डराता होगा? Then I replied, मैंने खुद को कभी इस खुशफहमी में मुब्तिला नहीं किया कि मुझे खोने का दुख किसी को किसी भी लम्हे भर के लिए क्या मुब्तिला नहीं किए मुझे खोने का दुख किसी को लम्हे भर के लिए भी सताएगा। तुम डर की बात करते हो, ये पोस्ट क्यों भेजी है मुश्क तुमने? मुझे बहुत अरसे बाद ये समझ आया कि वो चाहता था कि मैं उसके साथ तो रहूं पर कभी उस पर हक न जताऊं, मैं उसकी मलकियत तो रहूं पर उससे निभाने का मुतालबा ना करूं, मैं उसके साथ तो चलूं पर उससे हाथ थामने का मुतालबा ना करूं, मैं उसका इंतजार तो करूं मगर उसके देर से आने पर या ना आने पर उससे सवाल ना करूं, उस पर अपनी मोहब्बत तो लुटाऊं पर बदले में उससे जरा भी मोहब्बत की तवक्को ना रखूं। जिन इस वेले बंदे को क्या हुआ है? यही बात जी, तुम यकीन मानो मुझे अगर तुम ये न लिखते तो मैं भी यही कहता, लेकिन खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये वाकई वेला ही बंदा या बंदी है, लेकिन खैर जिंदगी में मुश्क इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं यार। और और जनाब, मैसेजेस तो आपके बेतहाशा हैं, गाने की जानिब भी जाया जाए या ना जाया जाए? नहीं जाया जा सकता भाई, हाँ नहीं जाया जा सकता, लिहाजा आपकी मैसेजेस पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो है मैसेजेस भी हैं और ब्रेक भी आने वाली है। अच्छा जी, मानूर का हो गया, यासीन भाई का भी मैसेज हो गया था, संजू आ गई शो पर इसीलिए मैं खुश हो गई हूँ। आपने इतने प्यार से संजू को एमएस पढ़े, थैंक्स। अरे मैं हमेशा प्यार से पढ़ता हूँ। जरीन नूर कैसी बातें कर रही है? संजू की मैसेज मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। आप सब लोगों को ये मैं ऑन एयर कई दफा बता चुका हूँ कि संजू के मैसेज जो है मुझे इस वजह से अच्छे लगते हैं कि उनके लफ्जों का

वेलकम बैक कहेंगे, प्यार का वादा कैसे निभाए, मैं बोलू तो मैं मर जाऊं, तू बोले तो तू भी मर जाए। क्या गाना था यार भाई, वाह वाह वाह। अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया ही खत्म हो जाए, यकीन माने। बढ़ते हैं आपके और मैसेजेस की जानेब। अच्छा भाई, हमारी मेमन फैमिली का मैसेज हो गया था, उसके बाद आसिफ कह रहे हैं कि सर हम ग्राउंड में मैच खेलते हैं, गली में नहीं, मैं फास्ट बॉलर हूं और 4 ओवर लगातार करता हूं। 4 ओवर, वाह वाह। इसका मतलब ये हुआ आसिफ, मैंने ये बात इस वजह से पूछी थी कि तुम्हारा स्टेमिना जो है वो अच्छा है आजकल के नौजवानों का, और उसकी वजह शायद ये है कि आप गेम खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, और ये बहुत जरूरी है, स्पेशली वो नौजवान बच्चे लड़के जो इस वक्त मुझे सुन रहे हों या उनके बड़े सुन रहे हों, तो आदत डालें बच्चों में कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करें जिसमें वर्जिश हो, यानी कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये गेम्स उनको, ये नहीं कि हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अबे भाई, ये जो है काम अगर आप करवाएंगे बच्चों से तो बच्चों फिजिकली फिटनेस रहेगी बच्चों की, ये बहुत जरूरी है। और आजकल ये जब से मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, स्मार्टफोन आया है, तब से इस चीज का रुझान जो है बच्चों में, खुसूसी तौर पर जो खेल सकते हैं, बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, ये रुझान कम होता जा रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। पहले तो भाई हम लोगों को ग्राउंड में जगह नहीं मिलती थी, दोपहर के वक्त पहुंच जाते थे ग्राउंड में, धूप में, कड़क धूप में, कि भाई अगर शाम का इंतजार किया तो ग्राउंड में जगह ही नहीं होगी। लेकिन अब आप जिस गली और मोहल्ले में चाहें आपको जगह ही जगह मिलेगी, खेलते ही नहीं है बच्चे। और जनाब आसिफ का मैसेज हो गया। मानूर कह रही है, बाबू आज आपने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े। सुभान अल्लाह मानूर, इतने मैसेज तुमने किए, सबके सब पढ़े, कुट्टी हूं मैं तुमसे। और इफ्तिखार कह रहे हैं थैंक यू नदीम एने भाई, फरमाइश पूरी करने की। नदीम भाई, जिस के दिल से एहसान निकल जाता है वो कैसे लोग होते हैं, मुझे तो पत्थर और उनमें कोई फर्क नहीं लगता। ये जो आपने बात की ना एहसान की हवाले से, इनके लिए मेरे पास बहुत सारे जखीरा है लफ्जों का, मगर वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, आप समझ गए ना। बस एहसान फरामोश होते हैं, बस इतना ही बहुत है। और नौरीन जी को हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन। और भाई हमारे ये जो रेहान अली, रहमान अली, रियाज अली जोखियो काठोर से जिन्होंने मैसेज किया था, भाई आपका मैसेज एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा आ चुका है और मैं आपका मैसेज पढ़ चुका हूं। जरीन नो देगा थैंक यू सॉन्ग के लिए, सुपर। अरे जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना, नो प्रॉब्लम। सर आपको सॉन्ग प्ले नहीं करना तो बता दे, थैंक यू। नानी इंतजार कर रही हैं, सो भी आ, वो सो जाती हैं, हम नाराज नहीं हैं आपसे, प्रोग्राम आपका, अमरजी आपकी। अरे सोबिया, आपने मैसेज करके बताया ही नहीं कि नानी का कौन सा गाना, देसा दा राजा, ये हाँ या ना का जवाब दे देती तो मैं गाना चलाता, सबके गाने चला रहा हूँ, तो ये आप नानी का गाना क्यों नहीं चलाऊंगा, नानी तो फिर नानी है ना हमारी, नानी तो कान भी पकड़ सकती है, नानी के समझ आएंगे ना आप। तो सोबिया जल्दी से मैसेज करो और बताओ देसा दा राजा चलाना है या फिर मैं अपनी मर्जी से चला दूं। आजकल वो लड़के भी लड़कियों को कह रहे होते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे नाम है, जबकि उनकी सिम भी उनके नाम पर नहीं होती, उनके अब्बू के नाम पर होती है। सलीम मेमन अच्छा चुटकुला था यार, आज के लड़के बाकी ये कह रहे हैं मेरा सब कुछ जान तुम्हारे नाम है, जबकि उनकी सिम भी जो है अब्बू के नाम पर होती है। वाह वाह वाह वाह वाह भाई, बहुत खूब।
अच्छा बाबा जान बोल रहे हैं कि डेट हुई है, डाट हुई है रियाज जोखियो, ये डाट क्या लिखा है, सही डेट ही समझ रहा था मैं इसको, तो बस ये जरा कुछ और लफ्ज इसका सोचो और भेजो ताकि मैं समझ सकूं। राजा अनवर कह रहे हैं नदीम भाई आपका शो बहुत अच्छा है भाई, बहुत शुक्रिया। अनम कह रही है कि इरफान भाई की अम्मी की तबीयत कुछ खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं, कॉल आई थी, बेहतर है माशाल्लाह से, और नेक्स्ट मंथ आपकी टीचर की बर्थडे है। हाय अल्लाह जी, भी प्यारी सी बहना मेरी टीचर की बर्थडे, भाई मेरे को बताना जरूर डेट ऑफ बर्थ, हम जरूर विश करेंगे अपनी प्यारी सी टीचर को। और इफ्तिखार कह रहे हैं कि नदीम भाई जिस रिश्ते का छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा जाए वो टूटता है जैसे जिस्म से रूह निकल जाए। हाय भैया मैं तो नकी दसा, ये तकलीफ अंदाजा मुझे है, आपको क्या पता हमारे कितने रिश्ते टूटे, शादी वाले नहीं इस टाइप के, और दिल पर क्या क्या गुजरी। नौरीन बहना का मैसेज आया है, कह रही है फरीदा साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दें मेरी तरफ से नदीम भाई। भाई फरीदा साहिबा आपने हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को विश किया, मुबारकबाद पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी जानिब से भी और हम सबकी जानिब से भी। मगर आप फैसलाबाद में तो कोई अच्छा सा तोहफा लेकर गई, अगर हम फैसलाबाद होते तो हम अपनी बहन को कोई ना कोई तोहफा तो देते। और सोबिया आपका मैसेज आ गया, हम समझ गया हूं, तो नानी को बोलना सोना नहीं है, नानी आपने सोना नहीं है, हम गाना जरूर चलाऊंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं नियाज बहादुर की फरमाइश पर, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं मानूर को और अयूब अफरीदी भाई को। अयूब अफरीदी भाई पर फिट होता है वैसे ये।

0: वेलकम बैक। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है जनाब, उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जायो सारी है। 3636 पर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस की जानिब जाएंगे, लेकिन एक मैसेज मैं भूल ही गया। जानू बर्गर वाला सुन रहा है भाई, जानू कैसा है भाई? कह रहे नदीम भाई आओ बर्गर खिलाऊंगा, लगता है मुझे फ्री में बर्गर मिलने वाला है। आज तक इसने जो है पैसे लिए बगैर बर्गर, यानी कि समझ रहे ना। लेकिन एक बात है यार जानू, ऑन एयर कह रहा हूं भाई, मैं वाहिद हूं जिसको ये सस्ता बर्गर देता है। लोगों से 20 रुपए कम लेता है भाई, कवासम कभी 50 रुपए कम भी ले लेता है, मोहब्बत में मोहब्बत में। जानू थैंक यू यार, लेकिन कवाली नहीं चला सकूंगा यार, कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए कवाली चला दें। गफरान भाई को कवाली है, फिल्मी कवाली। अरे हाँ मुझे याद आ रहा है कुछ फिल्मी कवाली टाइप के, ये बहुत सारे गाने हैं भाई। भाई चलाएंगे तुम्हारे लिए भाई, हमने गफरान भाई को कह दिया, गफरान भाई ढूंढ लेंगे। एक हुस्न की देवी से मुझे, शोभी भाई गुनगुना रहे हैं, आवाज आ रही है, शोभी भाई गुनगुना रहे थे ये एक हुस्न की देवी से, इनको बहुत पसंद है, वो देवी थी कोई। और अच्छा भाई नानी, शोभिया की नानी, अगला गाना जो है आपका ही चलेगा, सोना नहीं अभी। शोभिया इनको चाय पिला दो नानी को, ताकि नानी की थोड़ी सी नींद इधर उधर हो जाए। और उमेर कह रहे हैं एने भाई नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए, खुश रहें। क्या बात है उमेर भाई, मुझे क्या बात है, शुक्रिया भाई। मानूर कह रही बाबू आज आप काफी लेट पढ़ रहे हैं, मेरे पास बच्चा, मेरे प्यारी सी बहना, लेट मैसेज आ रहे होंगे आपके, लेकिन सारे मैसेज पढ़ रहा हूँ, ये बात पक्की पक्की है, कोई नहीं छड़े यार। और सुने हो ये जो सॉन्ग तू बोले तो मैं मर जाए, मुस्तफा भाई ने आपने वाइफ के लिए चलवाया है। अच्छा आप तो भूल नहीं सकते मुस्तफा भाई, तो भाभी भी जी इस डर से भूले ही ना, सही जा रहे हैं आप। अमीन भाई आ गए, कह रहे अस्सलाम वालेकुम स्वीट नदीम भाई, कैसे हैं, शो ऑसम, बिंदास बोले तो झगास। उमेर बाप जी और चुड़ैल सिस्टर यानी कि मुश्क को ट्रैक डेडिकेट कर दें यार, इतनी देर के बाद, यानी कि कैसे हो सकता है ये, आ गए आप क्या घुमा रहे हो? गफरान आ गया भाई, गफरान। हाँ और जैन का सॉन्ग है भाई, नहीं चल सकता, इतनी लेट सुनोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा आज का शो जो है। भाई जानू तुम्हारे लिए जो है ना, गफरान भाई के लिए तुमने बर्गर बनाना है। गफरान भाई कब आएंगे आप?
1: पैसे नहीं दूंगा।
0: नहीं नहीं आप आएंगे अब कब? परसों ना, परसों यानी कि जुमेरात वाले दिन। तो जानू तुम्हारे पास मैं आऊंगा, गफरान भाई के लिए तुमने बर्गर बनाना है टाइट सा बेहतरीन, और मैं पैसे नहीं दूंगा, गफरान भाई से पैसे नहीं देंगे। मुझे फोन करके बताओ अभी जानू बर्गर वाले, इसके पास मेरा नंबर है, मोहल्ले का है भाई अपने। जानू फिर मुझे भी खिला देना, अगर इसको खिलाया फ्री में तो मैं भी खाऊंगा। सही है ना? मैं भी ना। हाँ वो कह रहा है भाई नदीम भाई के लिए भी, ये गफरान भाई ने फरमाइश की है। आगे बढ़ते हैं। अबे बर्गर बर्गर पर शुरू हो गए। अरे शोभी भाई भी, अरे शोभी भाई सॉरी भूल गया, जानू भाई तीन बर्गर होने चाहिए। अब परसों जुमेरात को होंगे शोभी भाई? शोभी भाई नहीं होंगे यार। एक काम करते हैं शोभी भाई, अब क्योंकि शामिल है इसमें तो क्यों ना अगले मंगल का रख लिया जाए, मंडे का, बस मंडे का फिर पक्का है। शोभी भाई ओके, अंगूठा दिखाएं, शोभी भाई अंगूठा दिखाएं, शोभी भाई अंगूठा दिखाएं, ओके ना? हाँ ओके, नजर नहीं आ रहा था ना इधर। भाई जानू साहब आपकी कॉल आनी चाहिए, तीन अदद बर्गर, एक शोभी भाई के लिए, एक गफरान के लिए और एक मेरे लिए, आज नहीं कल भी नहीं परसों भी नहीं, अगले पीर को, अंडे वाला। गुफरान के लिए अंडे वाला बर्गर और अच्छा समा हो गया है शोभी भाई के साथ और गुफरान के साथ। यहाँ पर माहौल तो बड़ा अच्छा है, आपका कैसा चल रहा है माहौल जरा ये भी बताइएगा। चले यार मैंने बड़ी बातें कर ली हैं लेकिन मैसेजेस आपके अभी नहीं पढ़े मैंने, क्योंकि माशाल्लाह से आपके मैसेजेस बहुत शायरी जो शायरी पढ़नी चाहिए ना। और हाँ अमीन भाई का मैंने लास्ट मैसेज पढ़ा, अमीन भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये गाना नहीं चलेगा आज। कोई फिल्मी गाना बता दीजिए, वो मैं कोई भी फिल्मी गाना चला दूंगा। और महानूर कह रही है थैंक यू भाई नाइस सॉन्ग, अरे मेरी प्यारी सी बहनों को अच्छा लगा, सो स्वीट। मोहन लाल आ गए हैं यूके से और कह रहे हैं भाई प्लीज मेरी फरमाइश चला दें। भाई जान बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहां से गाना लेकर आए यार। गुफरान भाई को मैं बताता हूं वो ढूंढेंगे, मुझे तो लाइब्रेरी में ढूंढ ढूंढ के थक गया, मोंजो दाड़ो की पता नहीं तस्वीर मिलेगी है ना, है आपकी तस्वीर। अच्छा शोभी भाई इन्होंने एक फरमाइश की है, फिल्म का नाम भी लिखा है और मैं बोल बताता हूं आपको, मैं मैसेज ढूंढ रहा हूं। अबे शोभी भाई हमारे माशाल्लाह से उनका मेमोरी ऐसी जबरदस्त है पाकिस्तानी गानों के हवाले से, फिल्मी गानों के हवाले से, तो शोभी भाई बताएंगे। मैं पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाना है ही नहीं, और फिर जब उन्होंने फिल्म का नाम भी लिखा तो मोहनलाल साहब ने क्या प्ले सॉन्ग आ देख जरा मोहनजो दाड़ो में एक बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी है, ये फिल्म है गुना, सही है नहीं है, एक गुना, हाँ एक गुना, एक गुना और सही। अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मैंने गुना पढ़ा था सिर्फ। एक गुना और सही, अबे बिगड़ी हुई तस्वीर के साथ एक गुना और सही, पहले तस्वीर तो सही कर लेते। मोहनलाल यूके वाले, शोभी भाई ये यूके सिंध में है उमरकोट। और कहां गया मोहनलाल का ये मैसेज। उम्मीद रुबाब आ गए हैं, हाय एल जी कह रहे हैं अमीन, अमीन को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हमें नहीं सलाम आज, नाराज है उम्मीद रुबाब लगता है, हम उनको गाने डेडिकेट करेंगे तब वो मानेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा जी इफ्तिखार कह रहे हैं कि नदीम भाई मेरे दोस्त मेरे भाई के लिए कुछ आखिरी मैसेज दे, मैंने 7 साल रिश्ते को एक साइड चलाया, अब वो जो चुका है मुझे सबर की दुआ करें। यार भाई मेरी बात सुने, आपको मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूं, ये मोहब्बत आपकी जानिब से ही थी, उसकी जानिब से पहले साल से नहीं होगी, मतलब के साथ दोस्तियां निभाते हैं कुछ लोग, आप मासूम आदमी इफ्तिखार भाई हल्के दिल वाले बातों में आ गए, उनको वो दिल जितना मर्जी आप रोले पीट लें याद कर लें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा आपके साथ और भी बहुत प्यारे प्यारे से रिश्ते मुंसलिक हैं, उनका ख्याल कीजिए क्योंकि उनको आपका ख्याल है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अनिन कह रहे हैं कि कल भी पूछा था मुश्की सिस्टर क्या आपको खुद में विदाउट मेकअप के चुड़ैल वाला अक्स रूप नजर आता है, सबसे पहले तुम मुझे बताओ अमीन, मुश्क से पहले कि जब तुम सुबह उठते हो बगैर मुंह धोए शीशे में देख के डरते तो नहीं हो। अच्छा बाद में लिख भी रहे डोंट माइंड जोगिंग, डोंट माइंड जोगिंग, मैं भी जोगिंग कर रहा हूं। वैसे बताओ मुश्क ये सवाल का जवाब बताओ। सोने गुफरान भाई को आपने बता दिया मैंने बारबेक्यू पार्टी कर ली है, अभी नहीं बताया गुफरान भाई, अभी जो है काम में मसरूफ हो गए हैं। सलीम अमन भाई अबे यार मेरा गला खाशक हो गया, आपके मैसेज नहीं खत्म हो रहे। अनीस कह रहे हैं सलाम भाई आज का शो तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गजल प्रोग्राम वीक में 2 दिन होना चाहिए, ठीक है इस पर मैं मशवरा भी लेना चाहूंगा अनीस भाई आपसे भी और सबसे भी। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों को सलाम, और जो बहने हो क्या करें। सुने हो शोभी भाई को मेरा सलाम कहना, सलीम अमन सलाम कह रहे हैं शोभी भाई, अभी उन तक आवाज नहीं जा रही है सलीम अमन भाई, जैसे ही आवाज जाएगी तो फिर मैं दोबारा आपका मैसेज पढ़ूंगा। सर महनूर ठीक कह रही हैं, आप मैसेज बहुत लेट रीड कर रहे हैं। अरे मेरे शहजादे, इंटरनेट की वजह से हो सकता है आप लोगों के मैसेजेस लेट आ रहे हों, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, समझे बात को। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई, इन्होंने गाने की फरमाइश की हुई है। और वाजिबुल एहतराम नदीम अख्तर भाई साहब, फिल्मों के नाम और गाने हैं, और पहले मैं मैसेज पूरा पढ़ लूं इनका। फैदाबुल लाला, नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अयुबा अफरीदी और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। तो अलीमुद्दीन साहब कोशिश करेंगे, वादा नहीं है। शोभी साहब को आ रही आवाज, शोभी भाई सबसे पहले तो सलीम मेमन ने आपको बहुत सलाम कहा है। शोभी साहब को सलाम, उनसे कहें कहिएगा कि कभी फोन भी कर लिया करें। तानिया जी हैं, शोभी साहब कह रहे हैं हाजिर जनाब हाजिर। शोभी भाई, शोभी भाई कह रहे हैं हाजिर जनाब हाजिर जनाब। भैया खाला के सॉन्ग का क्या हुआ भाई? खाला तबस्सुम का, खाला कहाँ है, सुन रही है या नहीं सुन रही? खाला का एक मैसेज भी नहीं आया। खाला का मैसेज आया होता कोसाए तो मैं चलाता ना। अरे भैया, बड़े बड़े लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? मेरी प्यारी सी बहन नसरीन पटेल, मैसेज देर से पढ़ने के लिए माजरात, एक घंटे के बाद मैसेज पढ़ा है मैंने। सो मेरी प्यारी सी बहन, रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस तरफ मैं 3636 के बाद ही आता हूँ। शो बहुत अच्छा है आपका, दिल खुश हो गया जिते भाई। खुश तो संजू की वजह से हुआ ना, भाई की वजह से कहाँ होगा जरीनूर। और सॉन्ग के लिए फिर उन्होंने थैंक्स कहा है। मेरी बहन, इतना थैंक्स की जरूरत नहीं है, आप जब भी कह रही हैं हमके लिए गाना जरूर चलता है। और काशिफ कह रहे हैं कि रेडियो में अपने अपनी पसंद का सॉन्ग सुनने की बात ही अलग होती है। भाई आपको ऐनक वाला जिन याद है? उसमें एक करेक्टर था नानी, कड़ नानी थी वो। मैं भूतों की नानी, नाम है कड़ नानी ओ भाई, अपुन का नानी है, सोबिया का नानी, अपुन का नानी है, यानी कि समझ रहा ना। लेकिन वो यार करेक्टर अच्छा था प्लेलिस्ट अच्छी है और ओल्ड सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। हमें मेरा गला खाशक ज्यादा ही हो गया। तो अब बढ़ते हैं जनाब एक बहुत जबरदस्त ट्रैक की जानेब, और क्योंकि ये अभी क्या कहते हैं इसको, हमारे काशिफ भाई ने नानी का जिक्र किया, तो हमारी प्यारी सी नानी भी सुन रही है, सोबिया की नानी हमारी भी नानी है, और सोबिया को बहुत सारी विशेज हैं। अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, उनकी शादी होने वाली है और नानी इस खुशी में जो है गाना डेडिकेट कर रही है प्यारी सी सोबिया को। तो सोबिया, हमारी जानिब से भी आपके लिए ये गाना है।

ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸੁਣਿਓ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਿਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ ਯੇ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3636 ਪਰ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਨਦੀਮ से कभी भी नाराज नहीं हो सकता आपको मैंने आपको फारसी में SMS किया था लेकिन आप मालूम नहीं पढ़ा उमेर रुबाब किए उमेर रुबाब कोई मैसेज ऐसा नहीं आया आप यकीन माने क्योंकि मैं मैसेजेस को बार बार चेक भी करता हूँ स्क्रॉल करके कि कोई मैसेज मुझसे जो है वो मिस ना हो गया हो लेकिन नहीं आया तो मैंने नहीं पढ़ा अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम उमेर रुबाब कैसी हो तबीयत ठीक है आपकी स्वीट ब्रदर फिल्म खोए हो तुम कहाँ सॉन्ग जैन का जब समझने लगा अच्छा जी प्लीज प्ले कर दें थैंक यू भाई आप अपना नाम लिखिए पहले कि आपने कौन सा ये मैसेज जो किया है किस नाम से किया है और अब वक्त भी बड़ा महदूद सा है बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट जो हैं वो अभी भी लाइन पर हैं जो कि हमने अभी चलानी है यानी कि समझ रहे हैं ना आप तो अभी हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जो कि हम डेडिकेट करेंगे मीर हमजा को मीर हमजा की सालगिरह है और उनकी प्यार उनका भतीजा किसका होता है भाई समीना बलोच साहिबा के भतीजे मीर हमजा की सालगिरह है तो उनको हम ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं समीना बलोच की जानिब से और मीर हमजा आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक

अरे जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है मीर हमजा। और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रैक भी आपको पसंद आया होगा। अब मैसेजेस जो है वो आपके थोड़े थोड़े से शामिल करते हैं और जल्दी जल्दी से आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं जो कि बेतहाशा हैं। और जिस भाई को भी चुड़ैलों से जान छुड़ानी हो वो मुझसे राब्ता करे। सलीम मेमन कह रहे हैं, पहले तुम तो छुड़ा लो। सलीम मेमन खुद तो छुड़ाओ पहले। अमीन हूँ स्वीट ब्रदर, मेरा मैसेज था इन्हें। ओके अमीन भाई, आपके लिए गाना चलाएंगे। और 13.8 को मुझे भी सब विश करिएगा। 13 अगस्त को, सही कह रहा हूँ ना भाई? आप याद दिला दीजिएगा एक दिन पहले बस। सर सॉन्ग्स आर वेरी वेल। आसिफ तुम्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारा आज मूड अच्छा है, और कोई बात नहीं है। नदीम भाई कैसे हैं आप? भाई मेरे अपनों ने मुझ पे तावीज करवाया है, मेरा 5-6 साल से काम पे दिल नहीं लगता, घर के हालात बहुत तंग हो गए हैं, मैं अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपने भाई अपना नाम नहीं बताया, जो कि गलत बात है। ये तो काम कर रहे हैं वो, यकीन माने जब कुछ इंसान को समझ में नहीं आता तो आप यकीन माने गुफरान भाई, इंसान यही काम कर रहा होता है। और शैतान बहकाने में सबसे पहले यही अमल जो है दिमाग में डालता है जो आप बता रहे हैं। तो खैर मेरे भाई जो भी हैं आप, आपने नाम नहीं लिखा जिसका मुझे बेहद अफसोस है, मगर इसका बेहतरीन मशवरा मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन मशवरा इसका यह है कि नमाज कायम करो, यकीन मानो ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हारे दिमाग में फतूर है ना, किसी ने तावीज नहीं किया होता, दिमाग में ऐसे ही फतूर होता है, मेरे पे तावीज हो गया है, इंसानों को होता है ये, वहम हो जाता है, इसको वहम कहते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहम है, हो सकता है कि आपको आपके ऊपर वाकई में तावीज हुआ हो, लेकिन हो सकता है ये वहम भी हो, ठीक है ना? और जब वहम दिमाग में सवार हो जाता है तो आदमी यही समझता है कि जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो वो नामीद हो जाता है। अबे यार मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा भाई, भाई हो ही नहीं सकता यार। तो बस इसके इसका हल ये है, ये तमाम चीजें, ये फतूर जितने भी हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, चाहे जादू टोना कुछ भी है, बस नमाज कायम करना शुरू कर दो। दिल नहीं चाहेगा तुम्हारा पढ़ने को, लेकिन बस लड़ो अपने आप से और नमाज कायम करना शुरू कर। नमाज जब तुमने पढ़ना शुरू कर दी, उसकी पाबंदी शुरू कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी, और आपके अगर मिसाल के तौर पर आपको जो ये वहम है, ये वहम भी खत्म हो जाएगा। ये मेरी नजर में भाई एक बेहतरीन हल है जो कि मैंने आपको बताया। और अब जाएंगे जनाब एक और ट्रैक की जानेब, और जानो बर्गर तैयार रखना क्योंकि हमारे प्यारे से गुफरान भाई तुम्हारे लिए कवाली ढूंढ कर लाए हैं, तो ये तुम्हारे लिए कवाली है। एलो फड़ो।

वेलकम बैक सुनियो प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना। और नदीम भाई कैसे हैं आप? अच्छा ये ताबीज वाला था मैसेज जिस पर मैंने चर्चा भी कर दी थी। और भाई जून है, ये जून जुलाई को यार वैसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। ज्यादातर लोगों की सालगिरह जो है वो जून और जुलाई में होती है। जिस घर में देखो जून और जुलाई में पांच पांच केक कट रहे होते हैं। काशिफ भाई कह रहे हैं और जून और जुलाई में जो लोग होते हैं वो होते भी बड़े ओके ठेक हैं, हैं स्मार्ट जबरदस्त पर्सनैलिटी खूबसूरत नोटी नोट। अपना बहुत ख्याल रखें रखिएगा भाई, गुड नाइट। काशिफ भाई कट लिए भाई। सलीम इमन भाई कह रहे हैं सुनिए आपने अपनी वाली कोई भी आपने अपनी वाली को भी बोतल में बंद कर दिया है भाई। वो बोतल में तो किसी जमाने में आती थी, अब तो उसके लिए ड्रम लिया हुआ है, ड्रम में बंद करके रखता हूँ। खैर मैसेजेस अभी नहीं, वक्त बड़े तेजी से गुजर रहा है और अब आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करनी है। तो भाई हमारे मोहन लाल भाई आपके लिए गाना चला रहा हूं, पूरा नहीं चला सकूंगा क्योंकि बड़ा ही तवील गाना है भाई ये।

अब वो इंसान मोहनजोदड़ो चला गया तो उसमें उसको टाइम लगेगा मोहनजोदड़ो से यहां तक आने में। और अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जनाब, ये ट्रैक जो है ये हमारे प्यारे से अमीन भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की थी।

वेलकम बैक कहेंगे भाई ये पूरा गाना नहीं चल सका और हम फिर किसी दिन चला देंगे। और अब क्योंकि आपसे इजाजत भी चाहनी साइन आउट करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोशिश यही थी कि आपके तकरीबन तमाम ट्रैक्स जो हैं वो आपकी समातों तक पहुंचाएं। उस कोशिश में मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो कामयाब हुआ हूं, लेकिन आखिरी एक गाना डेडिकेट करना बाकी बनता है हमारी प्यारी सी मेमन फैमिली, जिसमें महानूर मेमन है, दुआ मेमन है और आज तो भाई दो और कजन्स थी मेमन्स की, वो भी साथ में मौजूद थी, उनको भी ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे। तमाम मेमन्स फैमिली को, इरफान मेमन को, सलीम मेमन को, सायरा मेमन को, आप सबके लिए ये लास्ट ट्रैक है। और उसके साथ साथ अब चाहेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

जी अब आवाज मेरे ख्याल बिल्कुल आवाज अब सही है। मगर इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है एक खूबसूरत सी गजल के चंद अशार जो है शामिल किए जाए आज के प्रोग्राम में, और इब्तदा उससे कीजिए, उसके साथ साथ फिर आवाज हम शामिल करेंगे इकराम मेहती की। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और बस जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, बिल्कुल नहीं जिया करते मुर्दा दिल, तो कहते हैं मुर्दा दिलों के सोबत में बैठोगे तो खुद भी मुर्दा दिल बन जाओगे, जीने से पहले मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे। इससे बहुत सारी बात जुमले हैं, बातें हैं जो हम अमूमन कहते हैं लफाजी में इस्तेमाल भी करते हैं, मगर बात हकीकत है। ये बातें, ये मिसालें, ये तमाम चीजें जो हमारे बुजुर्गों ने यहां से चलकर आई हैं, तो ऐसे नहीं है, ये बहुत ही तजुर्बों के बाद ऐसे जुमले या बातें या मिसालें बनती हैं। तड़प उठता है दिल मेरा उसे जब याद करते हैं, तड़प उठता है दिल मेरा उसे जब याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम खुद को जरा आजाद करते हैं। तड़प उठता है दिल मेरा उसे जब याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम खुद को जरा आजाद करते हैं, कहां तक जब्त की हम भी नुमाइश करते फिरते अब, कहां तक जब्त की हम भी नुमाइश करते फिरते अब, गली कूचों में गम अपना बहुत ईजाद करते हैं, गली कूचों में गम अपना बहुत ईजाद करते हैं, मोहब्बत में मिला है, मोहब्बत में मिला है जो वो तोहफा दर्द का ही है, मोहब्बत में मिला है जो वो तोहफा दर्द का ही है, उसी के सहारे हम दिल अपना शाद करते हैं, उसी के सहारे हम दिल अपना शाद करते हैं, बड़ी मुश्किल से खुद को, बड़ी मुश्किल से हम खुद को जरा आजाद करते हैं। खिजाओं का मुकद्दर बन गई अब ये तन्हाई, खिजाओं का मुकद्दर बन गई अब ये तन्हाई, बहारों के ही लम्हे बैठकर हम बर्बाद करते हैं, बहारों के ही लम्हे बैठकर हम बर्बाद करते हैं, तड़प उठता है दिल मेरा, तड़प उठता है दिल मेरा उसे जब याद करते हैं, तड़प उठता है दिल मेरा उसे जब याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम खुद को जरा आजाद करते हैं, कहां तक जब्त की हम भी नुमाइश करते फिरते अब, कहां तक जब्त की हम भी नुमाइश करते फिरते अब, कली कोचों में हम अपना बहुत ईजाद करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम खुद को जरा आजाद करते हैं। और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं अभी, यह आवाज है इकराम मेहती साहब की।

सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सलामत अली और अजरा सलामत की आवाज, खूबसूरत ट्रैक, खूबसूरत गजल। और जनाब ये हमें कनाडा से, तो आपको मैंने बताया कि हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त शुभ सुल्तान ने, हमें ज्वाइन किया टोरंटो से। उसके बाद फसी भाई क्या कहते हैं, फसी अदर कहते हैं जनाब आई एम नॉट पाकिस्तान भाई। अच्छा जबी तो आप गायब थे, मगर अब तो दुनिया में जहां गई भी है सर, अब तो कौन सा मसला है, अब तो एक ही फिंगर टिप पे बैठा बंदा कहीं बैठा हो सामने मौजूद है, मैं देखें ऑनलाइन हूँ, अब आप वहां हैं, कैनेडा में हैं, लाहौर में हैं, तो बंदा कहाँ कहाँ भी है, अब तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे बात तो खत ये हकीकत थी वैसे। और उसके बाद जनाब फिर आई एम योर ओल्ड फ्रेंड, फॉरगेट मी, आई एम योर एंड फर्रुख। जी बिल्कुल, मुझे यार शुएब सुल्तान, मैंने आपका नाम लिया, बिल्कुल आप शुएब सुल्तान में नाम लिया आपका यार, बिल्कुल ऐसी कौन सी बात है भला, आपको बोल सकती हैं। और उसके बाद जनाब फिर फंसे थे, वाह वाह वाह वाह आई एम, उसके बाद शुएब सुल्तान क्या कहते हैं, आई एम यूजिंग माई सन्स आई डी, वाई माई नेम इज नॉट शोइंग ऑन योर चैट, बिल्कुल नाम शो हुआ, मैंने नाम आपका लिया है, अपने नाम लिखकर भेजा, मैंने नाम लिया आपका यार, टेंशन रिश्ता यार। और उसके बाद अहमद शकील साहब लाहौर से क्या कहते हैं, जनाब सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने देख लिया आंख, कितनी आंख भर के देखा। इत्तेफाक देखें कि अमजद सलाम अमजद का खूबसूरत सा कलाम, और फिर वहां पर फराज, और फिर सलामत अली और हजरत सलामत, मतलब चार लेजेंड एक साथ, कैसी मजे की बात है ये। उसके बाद जनाब शुएब सुल्तान क्या कहते हैं, कैन यू प्ले दी गजल, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं शाम चुरा लूं, अगर बुरा चुरा लें भाई, आपको कौन मना कर सकता यार, आप चाहे शाम चुराएं, चुरा लें या सुबह चुरा लें या जो मर्जी, आप टेंशन निश्चय यार शुएब सुल्तान, बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं आपकी पसंद की गजल सुनवाता हूँ, बिल्कुल आप हमारे साथ साथ मौजूद रहें। और सॉरी आई एम ड्राइविंग, और इफ एनी स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज फॉरगेट, टेंशन निश्चा यार, टेंशन निश्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्या आपने लिखा मैं समझ गया कि कौन सा गजल है, अब वो गजल हो पजल हो कुछ भी हो, आगे आपने लिख दिया बात खत्म, मुक गई यार, गाली मुक गई फिर से। और उसके बाद जनाब अहमद शकील गए, वाह वाह जी क्या कहने शुभदीप भाई, अहमद फराज साहब क्या बात है, डायमंड लोग थे अहमद फराज, अमजद सलाम अमजद, ऑल रिमेम्बरिंग बोथ थे। और जनाब इसके साथ थे जनाब फराज साहब एंड अमजद साहब, जी जनाब बिल्कुल क्या बात है, देखिए अमजद साहब, फराज साहब, सलामत अली, ये दोनों कनाडा में हैं, वो दो हमारे दरमियान नहीं है, बस चारों लेजेंड। और उसके बाद फसी अदर भाई क्या कहते हैं, शोभी भाई एक रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत की बरसी थी, अगर सबको दुआ का बिल्कुल कह देंगे सर, ये तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल हम कहेंगे। और यकीनन जो है वो तमाम आपका जो मैसेज मैंने पढ़ा है तो तमाम लोगों तक पहुंच गया, बिल्कुल डॉक्टर आमिर लियाकत एक बड़ा हमारे लेजेंड, एक खूबसूरत नाम, खूबसूरत आवाज के, और बड़े अच्छे दोस्तों में भी थे हमारे, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत नफीस इंसान, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। तो आप सबसे दुआ इनकी बरसी है तो बस उनके लिए मगफरत की दुआ कीजिएगा, और उनके साथ साथ तमाम लोगों की दुआ कीजिएगा जो दुनिया से जा चुके हैं, उसमें आपके हमारे भी पावजात भी हैं, तमाम लोगों के लिए जिसके भी जो भी हैं जा चुके हैं सबके लिए अल्लाह ताला सबकी मगफरत करे, और सबके साथ साथ ही बिल्कुल दुआ कीजिएगा जरूर। और अब बात करते हैं माँ के हवाले से, एक खूबसूरत सा कलाम है, इसके शायर हैं अदीम सैयद, और इन्होंने क्या खूबसूरत बात लिखी है माँ पर, एक खूबसूरत सा कलाम इनका जो मैं शामिल करूंगा। माँ माँ तो ठंडिया छावाई तो गाली में कोई गिरने तो फिर है ही है, क्या कहते हैं, कल मैं एक बाजार से गुजरा, रास्ता पर एक माँ खड़ी थी, नंगे पांव जिंदा लाश, नंगे पांव ठंडी सड़क पर जैसे जिंदा लाश पड़ी थी, चेहरे पर हसरत के बादल,
چہرے پر حسرت کے بادل، آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی تھی۔ چہرے پر حسرت کے بادل، آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی تھی۔ ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، غربت اپنی ضد پہ اڑی تھی۔ چہرے پر حسرت کے بادل، آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی تھی۔ ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، غربت اپنی ضد پہ اڑی تھی۔ بھوک تھی بے پردہ وہاں پر، بھوک تھی بے پردہ وہاں پر، عزت تختہ دار چڑھی تھی۔ کچھ بچے تھے جن کی خاطر، کچھ بچے تھے جن کی خاطر، لگتا تھا بے خوف لڑی تھی۔ کچھ بچے تھے جن کی خاطر، لگتا تھا بے خوف لڑی تھی۔ چند سکوں کی خاطر جھولی، چند سکوں کی خاطر عثمان نے، چند سکوں کی خاطر جھولی ہر اس شخص کے آگے بڑھی تھی۔ جن کی جیب میں پیسے تھے پر، جن کی جیب میں پیسے تھے پر، سب کو اپنی آپ پڑی تھی۔ کل میں ایک بازار سے گزرا، رستہ پر ایک ماں کھڑی تھی۔ کل میں ایک بازار سے گزرا، رستہ پر ایک ماں کھڑی تھی، ننگے پاؤں ٹھنڈی سڑک پر، جیسے زندہ لاش پڑی تھی۔ چہرے پر حسرت کے بادل، آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی تھی۔ ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، غربت اپنی ضد پہ اڑی تھی۔ بھوک تھی بے پردہ وہاں پر، عزت تختہ دار چڑھی تھی۔ کچھ بچے تھے جن کی خاطر، لگتا تھا وہ بے خوف لڑی تھی۔ چند سکوں کی خاطر جھولی ہر اس شخص کے آگے بڑھی تھی۔ جن کی جیب میں پیسے تھے پر، سب کو اپنی، سب کو اپنی، سب کو اپنی آپ پڑی تھی، سب کو اپنی آپ پڑی تھی۔ رستہ پر ایک ماں کھڑی تھی۔ ماں اولاد کے لیے کا کچھ نہیں کرتی، ماں ہوتی ٹھنڈیاں چھاواں۔

मोहम्मद अली की आवाज से मैं खूबसूरती गजल थी मोहब्बत की कहानी भी वही है। वक्त 2:40 हो चुके हैं। एफएम यूनिट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं मौजूद हूँ आपके साथ और ये प्रोग्राम यकीनन आप रेडियो पर सुन रहे हैं। रेडियो के साथ साथ आप इस प्रोग्राम को लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्वाइन करना आना होगा यूट्यूब पर और मैक्स MAKS मैक्स HGTV लिखेंगे या फिर फेसबुक का लिंक मौजूद है आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। बहरहाल आप सबको मैं खुश आमदीद कहूंगा और जनाब कतील शिफाई की एक खूबसूरत सी गजल की चंद अशार आपकी नजर करना चाहूंगा मैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहां जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहां जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे, जो वाबस्ता हुए तुमसे वो अफसाने कहां जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहां जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे वो अफसाने कहां जाते, निकल कर दीर काबा से अगर मिलता न मैं खाना, निकल कर दीर काबा से न मिलता अगर मिलता न मैं खाना, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहां जाते, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहां जाते। तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहां जाते, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहां जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर के समझाने कहां जाते, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहां जाते, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहां जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठकर दीवाने कहां जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठकर दीवाने कहां जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे वो अफसाने कहां जाते, निकल कर दीर काबा से अगर मिलता न मैं खाना, निकल कर दीर काबा से अगर मिलता न मैं खाना, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहां जाते, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहां जाते। तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम आंखों से पिला देते, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहां जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहां जाते, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहां जाते। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहां जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहां जाते। एक और गजल की चंद खूबसूरत अशआर हैं। करती है ये बात बहुत परेशान मुझे, करती है ये बात बहुत परेशान मुझे, छोड़ न जाए कहीं मेरी जान मुझे, करती है ये बात बहुत परेशान मुझे, छोड़ न जाए कहीं मेरी जान मुझे, बना के अपना क्यों अब वाकिफ नहीं होते, बना के अपना क्यों अब वाकिफ नहीं होते, कर जरा सा रहम अब अपना मान मुझे, कर जरा सा रहम अब अपना मान मुझे, बुलाए कभी तो मुझे अपने घर में, बुलाए कभी तो मुझे अपने घर में, कहा गया है मेरे दिल का ये अरमान मुझे, बुलाए कभी तो अपने घर में मुझे, खा गया है मेरे दिल का ये अरमान मुझे, दूर से आया हूं मैं देखने तेरी सूरत,
دور سے آیا ہوں میں دیکھنے تیری صورت، ایک نظر دیکھ ادھر تو بھی پہچان مجھے، ایک نظر دیکھ ادھر تو بھی تو پہچان مجھے، کیوں نہ کرتا میں ان سے اظہار الفت، کیوں نہ کرتا میں ان سے اظہار الفت، دے رکھی ہے قدرت نے جب زبان مجھے، دے رکھی ہے قدرت نے جب زبان مجھے، چمک رہا ہے میرے دل میں وہ اب تک، چمک رہا ہے میرے دل میں وہ اب تک، لگایا ہجر کا جو تو نے نشان مجھے، چمک رہا ہے میرے دل میں وہ اب تک، لگایا ہے ہجر کا جو تو نے نشان مجھے، جانا نہ کہیں تم کر کے مجھے تنہا، جانا نہ کہیں تم کر کے مجھے تنہا، چھوڑ دے چاہے سارا یہ جہان مجھے، چھوڑ دے چاہے سارا یہ جہان مجھے، چھوڑ نہ جائے کہیں میری جان مجھے، کر ذرا سا رحم اب اپنا مان مجھے، اب اپنا مان مجھے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।